मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 16 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है मंगल ध्वनि।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है आज का विचार विश्व शांति विषय पर। वाचक स्वर हैं श्री विश्वनाथ मिश्र के।
2: आजकल कहा जा रहा है कि विश्व विनाश के किनारे खड़ा है। विनाश की विभीषिका ने मानव को आतंकित कर रखा है, इसलिए विश्व शांति के प्रयत्न बराबर चल रहे हैं। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, विभिन्न राजधानियों की दौड़ लगाई जा रही है, निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, विभिन्न स्थलों को शांति का क्षेत्र घोषित करने का भी प्रयास चल रहा है। परंतु जितने प्रयास किए जा रहे हैं, विश्व शांति उतनी ही दूर होती जा रही है। कैसी है यह विडंबना। आज अपने को सभ्य एवं विकसित कहने वाला मानव, प्राचीनता को पानी पी पी कर कोसने वाला मानव आज संतरस्त है। वह दौड़ रहा है मृग मरीचिका में प्यास बुझाने के लिए। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृता का डींग हाँकने वाले आज एक दूसरे के खून के पिपासु हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर भी कभी विचार किया गया। इसमें संदेह नहीं कि इन सब आपत्तियों की जड़ या निदान मानव की जड़वादी प्रवृत्ति है। जहाँ ईश्वर में विश्वास नहीं, धर्म और परलोक का भय नहीं, शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं, वहाँ सिवा अशांति, उपद्रव एवं विभीषिका के और क्या उपलब्धि हो सकती है। जड़वाद की शुष्क मरुमरीचिका में शांति सरित की विमल सुस्निग्ध बारिधारा कभी प्रवाहित हो सकती है क्या। कभी ऐसा भी समय था जबकि न कोई राजा था, न कोई राज्य था, न कोई दंड देने वाला था, न कोई दंड था, किंतु धर्म के आधार पर ही सारे प्राणी परस्पर प्रेम से रहते थे। पारस्परिक वैर का तो नामो निशान भी नहीं था। विषमता नामक वस्तु तो ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। गोस्वामी जी ने कहा है, वैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बिना धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावना की स्थापना किए मानव में प्रेम एवं स्नेह का उद्रेक कभी हो ही नहीं सकता। यह दिखाई पड़ने वाला स्थूल

0: शरीर तो समानता का आधार कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई स्थूल तो कोई पतला, कोई बुद्धिमान तो कोई निर्बुद्धि या मंदमति, कोई सुंदर तो कोई कुरूप। ऐसी स्थिति में शारीरिक आधार पर तो समानता की बात करना व्यर्थ ही है। समानता का आधार तो शरीरातिरिक्त आत्मा ही हो सकता है, जो प्राणी मात्र में अनुस्यूत है। वह जैसे शूकर कूकर कीट पतंग में है, वैसे ही धनी निर्धन निर्बुद्धि बुद्धिमान सुंदर कुरूप सभी में व्याप्त है। अतः प्राणी मात्र की सेवा उसी आत्मा की सेवा है। इस बुद्धि से व्यवहार करने से ही मानव की दानवी वृत्ति का शमन हो सकता है, अन्यथा मूल को छोड़कर शाखाओं के सिंचन से केवल दुराशा मात्र ही हाथ आएगी। भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में मैं ही व्याप्त हूँ। अध्यात्मवाद की यह संजीवनी ही आज के विभीषिकाग्रस्त जलते हुए विश्व के लिए एकमात्र सहारा हो सकती है। जहाँ पर पीड़न को पाप, परोपकार को पुण्य बताया गया है, हम एक ही परमात्मा की संतति हैं, अतः हम सब एक हैं। यह भावना ही भ्रातृता की जननी हो सकती है। मार्क्स के द्वारा प्रसारित जड़वाद की आंधी, जिसने आज विश्व को आंदोलित कर रखा है, अपने दुखद परिणामों के कारण आज स्वयं उपेक्षणीय होती जा रही है। जड़वादी महल आज धराशायी होने के लिए उन्मुख दिखता है। यह विश्व के लिए शुभ लक्षण है, क्योंकि बिना अध्यात्म भावना के उद्दाम भौतिकवाद कभी भी मानव का कल्याण नहीं कर सकता।
1: अभी आपने सुना आज का विचार विश्व शांति विषय पर, वाचक स्वर श्री विश्वनाथ मिश्र के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कार्यक्रम के आज के अंक में आप सुनेंगे बाल कांड की दोहा संख्या 71 की पहली चौपाई से। दोहा संख्या 67, माफ कीजिए 73 तक का स्वर पाठ। गायक कलाकार रविंद्र साठे, संगीतकार सतीश भाटिया।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चित्र भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। कार्यक्रम में प्रमुख चर्चा का विषय क्वांटम क्रांति, विज्ञान की नई दिशा। प्रेरणादायक वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस, रोचक वैज्ञानिक तथ्य, आलेख व प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की, संयोजन श्री अमित सिंह का। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे स्मार्टफोन जो जीवन आसान बनाए, कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी, परिवार में शांति और आपसी समझ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ताकार श्रीमती रेखा गुप्ता की वार्ता, विषय संघर्ष से संवाद तक शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा साहित्य और युवा। लघु जानकारी के विषय रहेंगे सिक्किम दिवस, शांतिपूर्वक सह जीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, पारिस्थितिकी तंत्र। शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण जगत में आज आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह का।

सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन राग नर भैरव पर। सुबह 10:00 फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जय जवान और सुबह दिन के 11:00 आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। सूत्रधार श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: यह था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। खेती बाड़ी में पशुओं की भूमिका विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री बजरंग सारस्वत।
1: सैकड़ों साल से मिनख कोई न कोई तरीके से पशुआ माथे निर्भर है। पुराने समय से हुई मिनख

0: खेत में ए अपार पक्षी है ए चिड़िया और कीड़ा ने खार किसान भाई रो नुकसान होने से भी आपने बचावे है। किसान खेती बाड़ी से सागे पशु पालन करे तो वाने दोगुनो मुनाफा होवे और खेती में आमदनी बढ़ जावे। अबे आपा बात करा छोटी सी मधुमाखी री तो आ फसल में प्रसार सारू महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। जे आपरो काम सही तरीके से नहीं करे तो फसल री उपज कई गुणा कम हो सके है। दूजी कानी आ शहद बनावे है जिकेरो सेवन मनुष्य करे है। जे इन धरती सु मधुमक्खी अलोप हो जावे तो मिनख इन धरती माथे फिर भी जीवन संभव कोनी। कई किसान फसल री उपज बढ़ाउन सारू मधुमक्खिया रे बक्सा में फसल राखे है ताकि फसल री उपज अच्छी निकले। मुर्गियां है ए भी माटी री गुणवत्ता ने बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। इरे सारू मुर्गियां री बींट है बिसु खेत तैयार करीजे है। खेत ने तैयार करती वेला बींट ने इस्तेमाल करीजे है जबकि फसल री बिजाई रे समय माटी में जरूरी तत्व है पोषक तत्व है बाने बढ़ावे और फसल सही तरीके से बढ़े। इरे अलावा मुर्गियां रो एक और महत्वपूर्ण योगदान है। खेत में जे मुर्गियां ने फसल में छोड़ दी जावे तो ए फसल में कीड़ा ने खा जावे जिनसु किसान रे कीटनाशक खरीदने रो खर्चो भी बच जावे। तो किसान भाया अपर है खेती बाड़ी में गाया हुओ भले अपारा बढ़त ए सब अपरी सहायता करे है। आरे खाने पीने रो प्रबंध अपर खेती बाड़ी मायने खरपतवार या फसल अवशेष है बीरे रूप में आपने सहज रूप में ही हो जावे और आरे सारू आपने न्यारो खर्चो कोनी करनो पड़े और ए अपारा खेती बाड़ी में कितनी सहायता करे है। ए छोटा टोगड़िया टोगड़ी है आरे संरक्षण सारू आरे पोषण सारू आप खास जतन करो और आने अच्छा आप तैयार करो तो टोगड़ी अच्छी गाय बन सके है अरे टोगड़ियों आछो बड़द बनर खेती बाड़ी में आप सहायता कर सके है। सगड़ा किसान भाई है वे ट्रैक्टर लेने में सक्षम कोनी है तो वे बैलगाड़ी सु आप रो काम चलावनो चावे और कम खर्चे मायने आप चावा तो बड़द गाड़ी है बा जिते ताई आप ट्रैक्टर रो जुगाड़ नहीं हो सके बीते ताई आप मोकड़ी सहायता करे है और आ सब प्रदूषण ने भी रोके है। प्रदूषण कोई भांतरो आऊं हुए को नहीं तो आपने यहाँ कर आप पशु पक्षियां ने आने बचावना है और खेती बाड़ी में आने योगदान ने हमेशा याद रखना है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में खेती बाड़ी में पशुओं की भूमिका विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री बजरंग सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत समाचार।

कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, हम स्वतंत्र भारत देश में निवास करते हैं, हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। अनेकताओं में एकता विद्यमान है यहाँ, और रीति रिवाज, संस्कार, दस्तूर के साथ परिवारों का ताना बाना ऐसे गूंथा हुआ है जैसे कि विभिन्न कलर के मोतियों से बनी एक माला। पूरा विश्व हमारे देश के इस कल्चर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और यहाँ के कल्चर को जानने पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन इस भारत भूमि ने सैकड़ों वर्षों तक गुलामी, दासता को झेला है। अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, और उससे पहले जो युद्ध हुए, लड़ाई हुई, राजपूत राजाओं ने लड़ी, उन्होंने हमें मुगलों से मुक्ति दिलाई। लगभग 800 वर्षों की दास्ता के बाद हमारा यह भारत देश आजाद हुआ। आज पूरा विश्व चाहता है कि हमारे इस पारिवारिक ताने बाने पर हमला कर एकल परिवारों को बढ़ावा दे, ताकि हर एक व्यक्ति को बिजनेस करने का, व्यापार करने का मौका मिले। क्योंकि जब भी दो लोगों की फूट बढ़ती है या परिवार टूटता है तो लोगों को व्यापार करने का मौका मिलता है, और आप समझ सकते हैं कि व्यापार सिर्फ और सिर्फ कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो अपनी समृद्धता, अपनी रिचनेस को इम्प्रूव करने के लिए ही करेगा। इसलिए पूरी दुनिया यह नहीं चाहती

कि जिस तरह से पारिवारिक तानाबाना हमारी भारत भूमि पर विद्यमान है वह वास्तव में अस्तित्व में हो। परिवार टूटने चाहिए, यह कोशिश वर्षों से लोग कर रहे हैं। और ठीक इसके बाद हमारे खान पान के कल्चर पर भी हमला कर रहे हैं। लापसी, दही, राबड़ी, मट्ठा, छाछ, दलिया और कांसे के बर्तनों में भोजन, यहां तक कि डोर हैंडल भी तांबे के बने हुए होना, तांबे के घड़ों में पानी होना हमारी पूरी लाइफ साइकिल को हेल्दी बनाए रखता है। लेकिन अगर हम हेल्दी रहेंगे तो लोगों को व्यापार करने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर उन्होंने फूड कल्चर में भी सम्मिश्रण करना चालू कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हेल्दी रहे, आप चाहते हैं कि आपके परिवार के विचारों में किसी भी तरह का सम्मिश्रण न हो, संक्रमण न हो, तो आपका परिवार संयुक्त होना चाहिए और आपका भोजन जो भी आयुर्वेद में महत्व बतलाए गए उनके समावेश के साथ होना चाहिए। फर्श पर बैठकर उंगलियों के पोरों से भोजन को स्पर्श करके खाने की जो विधि है ना, वह न सिर्फ भोजन के स्वाद को लेने में मददगार होती है जबकि भोजन को पचाने में भी मददगार होती है। यह सब तब संभव हुआ जब कई राजाओं ने और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे इतिहास को सहेजने और संरक्षित करने का प्रयास किए। हमारा कल्चर वाकई में अद्भुत है। इसके बावजूद अगर हम वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर गलत तो हमेशा गलत ही होता है और हम उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। खैर श्रोताओं, जिस आज़ाद भारत में आज हम निवास कर रहे हैं वह एकीकृत भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। आज़ादी के ठीक बाद भारत देश में जितने भी राज्य हैं वे अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे। उन रियासतों का एकीकरण किया लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल ने। इन रियासतों के एकीकरण में कई प्रयास हुए, कई राज्य यानी कि रियासतों के जो राजा थे वे नहीं माने, अड़ गए कि हमें अपनी रियासत खुद से ही चलानी है। लेकिन अनेकों अनेक प्रयास के बाद एकीकृत भारत का निर्माण हुआ, भारत का एकीकरण हुआ। ऐसे में एक राज्य जो हमारे भारत देश में आज यानी कि 16 मई को विलय हुआ था वह राज्य है सिक्किम राज्य। प्रत्येक वर्ष 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है और यह दिवस उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब 1975 में सिक्किम राजशाही का अंत हुआ और जनमत संग्रह के पश्चात यह भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। और 1975 से पहले सिक्किम नामग्याल राजवंश द्वारा शासित एक स्वतंत्र हिमालयी राजशाही था। अप्रैल 1975 में जनमत संग्रह के बाद भारी बहुमत से सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने का फैसला किया गया। सिक्किम दिवस भारतीय संसद द्वारा पारित 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 16 मई 1975 को सिक्किम के आधिकारिक तौर पर भारत का जब 22वां राज्य घोषित किया गया तब से 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज्यभर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक नृत्य, मेलों और सरकारी आयोजनों के माध्यम से सिक्किम की विरासत, एकता और विकास का उत्सव मनाया जाता है। जानकारी को देते हैं विराम, सुनते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत।

0: का जवानी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग
2: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान का और विस्तार का
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान
3: आकाशवाणी बीकानेर आपकी आवाज जन जन तक
4: श्रोताओं जब हम समृद्ध होते हैं जब हम रिच होते हैं रिच जब हम अमीर होते हैं जब हम प्रॉस्पर होते हैं तब हम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं लोगों की आंखों में आ जाते हैं हमारी भारत भूमि सदियों से रिच रही है प्रॉस्पर रही है इसलिए यह भारत भूमि आकर्षण का केंद्र रही ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ बिजनेस करने के लिए आई यहाँ तक कि भारत भूमि को सोने की चिड़िया की संज्ञा भी दी गई इस वजह से क्योंकि भारत भूमि धनी थी समृद्ध थी जहाँ समृद्धता होती है लोगों की आंखों में आना स्वाभाविक सी बात है आपके पड़ोसी से लेके आपका हर एक रिलेटिव आपके बारे में चर्चा करने लग जाता है जब आप रिच होते हैं प्रॉस्पर होते हैं हर वक्त हर पल ये कोशिश करें कि आपकी पॉकेट हमेशा भरी हो और आपके घर में आपके परिवारजनों को धन के अभाव का सामना कभी नहीं करना पड़े इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सदैव प्रयासरत रह सकते हैं सदैव मेहनती हो सकते हैं धूप छांव पसीने की परवाह किए बगैर अपने कार्य को कंप्लीट करने की पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं नॉलेज वाइज टेक्नोलॉजी वाइज आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है धरती के हर एक कोने में एआई की गूंज है कोशिश करें आप कि अगर आपको अक्षर ज्ञान है अगर आपको कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान है तो अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान लेने की कोशिश करें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं बच्चों में अभी समर वेकेशंस आ गए हैं उनको भी आप एआई से जुड़ा हुआ कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल कोर्स ज़रूर कराएं ऐसा क्यों करना है ऐसा इसलिए ताकि आपका नॉलेज इम्प्रूव हो आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा तो जीवन में कई चीज़ें सरल होगी तो फिर आप आपके लिए जो प्रोडक्टिव वर्क हैं उनको अच्छे से पूरा करेंगे और जब आप कार्यों को निपटान करते रहेंगे तो आपकी पॉकेट हमेशा भरी रहेगी कोई नहीं चाहता कि आप रिच हों आप प्रॉस्पर हों लेकिन आप स्वयं तो चाहते हैं कि आपकी पॉकेट हमेशा भरी हो तो हमेशा ये कोशिश करें कि आलस को त्याग कर काम को अपनाएं सदैव एक्टिव बने रहें सदैव कार्यशील बने रहें एक्टिव रहने का सिर्फ एक फ़ायदा यह नहीं है कि आप अमीर बनते हैं दूसरा फ़ायदा यह भी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है आपके आसपास बीमारियां नहीं आती शरीर से निकलता हुआ पसीना कई बीमारियों के निदान का कारण भी होता है इसलिए कोशिश करें कि आप इतनी मेहनत करें क्या आपके जीवन में कभी गरीबी आसपास फटक भी ना पाए श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि हमारे परिवार का जो ताना बाना है वो इस तरीके से बुना हुआ है कि विभिन्न रंगों की जो मोती होते हैं उनसे बनी हुई एक माला के रूप में दिखलाई पड़ता है फ्लैट वाला जो कल्चर मेट्रो सिटीज़ में आया है एकल परिवारों का जो कल्चर

बड़े बड़े शहरों में आया है, आजकल तो हालांकि गाँव में भी ऐसा होने लग गया। यह वैचारिक संक्रमण हमारे दिलो दिमाग में टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से बिठा दिया गया है कि एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, एकल परिवार में जीवन संयुक्त परिवार की तुलना में ज़्यादा सुखी होता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। संयुक्त परिवारों में रहने वाले बच्चों की सहनशीलता और आपसी समन्वय इतने भयंकर लेवल पर होता है कि बच्चे जीवन के किसी भी एंगल पर, किसी भी मोड़ पर अपने आप को अकेला नहीं पाते और मन से इतने मजबूत होते हैं कि जीवन की कोई भी कठिनाई उन्हें विचलित नहीं करती। लेकिन एकल परिवारों में रहने वाले बच्चे, उनमें सहनशीलता नहीं होती और छोटी छोटी सी कठिनाई, 10th में मार्क्स कम आए, 12th में मार्क्स कम आए, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, छोटी छोटी सी बात वे झेल नहीं पाते, उनकी सहनशीलता नहीं होती, आपसी समन्वय उन्हें बिठाना नहीं आता, और तो और चीज़ों को बड़ों के बीच, बच्चों के बीच आपस में कैसे शेयर करके हमें जीवन जीना है वह भी उन्हें नहीं आता। छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती है और कई बार उसमें सिंगल पेरेंट यानी कि मदर फादर फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उस वजह से उनके बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चों में सहनशीलता हो, आपके बच्चों में लोगों के बीच में समन्वय बिठाना आता हो, आपके बच्चे लोगों के बीच चीज़ों को शेयर कर सकें और उनकी समझ जो है इतनी अधिक मैच्योर हो कि छोटी से छोटी बात अगर उनको जीवन में मुश्किलों भरी लगे तो वे स्वतः ही उसे हैंडल कर लेंगे। यह बात एकल परिवार के बच्चे कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि किताबें सिखाती तो हैं लेकिन उस लेवल का नहीं सिखाती जिस लेवल का हमें संयुक्त परिवार के बीच में रहने को मौका मिलता है। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को उनके दादा दादी, उनके अंकल आंटी से दूर ना करें, बच्चों को परिवार के साथ में रखें। जो बच्चा परिवार के बीच में बड़ा होता है वह बच्चा जीवन को सही मायनों में, सही परिप्रेक्ष्य में लेता है। जो बच्चा एकल परिवार में जीता है, फ्लैट वाले कल्चर में जीता है, वह जीवन को सही मायने में नहीं लेता। उसके जीवन में कठिनाइयों का आना तय है और उन कठिनाइयों को नहीं झेल पाने की क्षमता नहीं होने की वजह से उसका विचलित होना तय है। इन सभी बातों को दृष्टिकोण में लेते हुए और इनकी गंभीरता को अंडरस्टैंड करते हुए आज 16 मई को शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। इस दिवस का अपने आप में और आज के भारतीय वैचारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इस दिवस का बहुत महत्व है। हमें हमारे परिवारजनों के बीच में शांति से रहना चाहिए, परिवारजनों के बीच में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो जीवन में उस पेड़ की छांव का अनुभव भी लेंगे, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो हमें उस जीवन रूपी वृक्ष की छाया का अनुभव कभी नहीं होगा। शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज 16 मई को इन्हीं विषयों से जुड़ी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। सभी देशों, संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के बीच मतभेदों को भुलाकर शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। लोग नहीं चाहते कि आप स्वस्थ हों, लोग नहीं चाहते कि आपका परिवार संयुक्त हो। अगर संयुक्त होंगे, अगर स्वस्थ होंगे और सदैव एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, तो लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे। और आज इस पूरी धरती पर क्या हो रहा है ये हम

भली भांति जानते हैं। यहाँ लोग इस भारत भूमि पर व्यापार करने आए और उसके बाद में हमारे भारत देश को गुलाम बना गए। ऐसी ऐसी वैचारिक पद्धतियां हमारे मानसिक पटल पर थोप दी गई है, जिसकी वजह से आज भी हम गुलाम हैं। अंग्रेजी बोलने में ही हमारी शान है, मेकाले की शिक्षा पद्धति व्हाइट कॉलर जॉब में ही हमारी शान है। नौकरी अगर हम करेंगे तो ही जीवन हमारा सफल होगा, नहीं, बिजनेस करने से जीवन हमारा सफल होगा। मातृभाषा को, मदर लैंग्वेज को अपनाने से हमारा जीवन सफल होगा और नौकरी देने वाला बनने से हमारा जीवन सफल होगा। तो कोशिश करें श्रोताओं कि हम अपने जड़ों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और किसी भी तरह का वैचारिक संक्रमण हमारे मानसिक पटल पर किसी के हस्तक्षेप से न हो, तभी हम हमारे जीवन में सफल हो पाएंगे, सक्रिय हो पाएंगे। अन्यथा लोग आएंगे व्यापार करके, हमें गुलाम बना के चले जाएंगे। बातों को देते हैं विराम, कार्यक्रम में सुनते हैं वो गीत जो हमें हमारी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ और इस आशा के साथ कि आप अपने परिवारजनों के बीच रहेंगे, सदैव अपने माता पिता की सेवा करने की कोशिश करेंगे, उनकी दवा, उनकी चिकित्सा, उनके भोजन और उनके बचकाने व्यवहार, अक्सर उम्र के साथ में बूढ़ों में भी बच्चों जैसी आदत आ जाती है, तो उसको अपनाते हुए और ठीक उस तरीके से उन दिनों को याद करते हुए कि किस तरह से उन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की थी, सदैव आप अपने माता पिता की सेवा करते रहेंगे। इस आशा के साथ कार्यक्रम सुप्रभात में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

सुप्रभात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सिम्बा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना राहत फ़तेह अली खान के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है बोल बच्चन, स्वर है हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल के।

तुम बिन टू का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मर्डर टू। स्वर है क्षितिज रे, सेम भट्ट और मिथुन के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों

0: पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।

0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान

0: के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विज्ञान के नए आयामों से रूबरू करवाता हमारा विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया की नई कड़ी में। क्या आपने कभी सोचा है आने वाले कुछ सालों में हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? क्या होगा जब क्वांटम कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को पलक झपकते हल करेंगे, या जब मंगल ग्रह पर बसने के सपने सच होंगे? विज्ञान की दुनिया की आज की कड़ी में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई खोजों की कहानियाँ और भविष्य की तकनीक के अनगिनत चमत्कार। तो तैयार हो जाइए ज्ञान और रोमांच से भरी इस दिलचस्प यात्रा के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ वैज्ञानिक रोचक तथ्य, और विज्ञान की बात में हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार छंगाणी से भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में। आज की हमारी प्रेरणादायक वैज्ञानिक होंगी मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस। तो आइए शुरुआत करते हैं विज्ञान की दुनिया के इस रोमांचक सफर की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। उन खोजों में से एक है क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भौतिकी के वह सिद्धांत जो पहले केवल प्रयोगशाला और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित थे, अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सुरक्षा, संचार, औषधि और उद्योग में उनके अनुप्रयोग दिखा रहे हैं। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इस विषय पर विचार कर रही है, विकसित कर रही है और इसे सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए अवसर जुटा रही है। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्वांटम विज्ञान है क्या। क्वांटम विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो पदार्थ और ऊर्जा के सूक्ष्मतम स्तर पर घटित घटनाओं से जुड़ा है, जहां परमाणु, उप परमाणु कण यानी कि एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि की भूमिका होती है। यहाँ कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। क्यूबिट यानी कि परंपरागत कंप्यूटरों में बिट होते हैं जीरो या एक की स्थिति में, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट होता है जो सुपरपोजिशन की स्थिति में हो सकता है, यानी एक साथ जीरो और एक की स्थिति में भी हो सकता है। सुपरपोजिशन में एक कण एक साथ कई अवस्थाएं धारण कर सकता है जब तक कि उस पर मापन नहीं किया जाए। इसमें एंटेंगलमेंट भी हो सकता है, यानी कि दो या अधिक कण इतने मधुर रूप से जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति जान लेने से दूसरे कण की स्थिति तुरंत प्रभावित होती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हो। मेट्रोलॉजी और सेंसिंग में क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करने से समय, दूरी, ऊर्जा, स्थान आदि के मापन को बहुत सटीक तरीके से किया जा सकता है।

सकता है। ये गुण जब सही तरह से विनियोजित किए जाएं तो हमें नए प्रकार के कंप्यूटर, अत्यंत सुरक्षित संचार और अति संवेदनशील उपकरण मिल सकते हैं। क्वांटम विज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अभी तक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सबसे पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये वह क्षेत्र है जहां क्यूबिट्स को प्रयोग में लाया जाता है ताकि कुछ प्रकार के जटिल गणनाएं बहुत तेजी से हो सके, जैसे कि क्वांटम सिमुलेशन यानी कि मटेरियल साइंस, ड्रग डिस्कवरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी है क्वांटम कम्युनिकेशन। इसमें क्वांटम की वितरण यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जैसी तकनीकें शामिल हैं। तीसरा है क्वांटम सेंसिंग और मीटियोरोलॉजी। उच्च संवेदनशीलता वाले सेंसर, अति सटीक घड़ियां, मैग्नेटोमीटर, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जैसे उपकरण जो छोटी छोटी यानी कि छोटे डिफेक्ट्स को पता कर सकते हैं, छोटे छोटे चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में बदलाव महसूस कर सकते हैं। चौथा है क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस। चौथे हैं क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस, सुपरकंडक्टर्स, टोपोलॉजिकल मटेरियल्स, फोटोनिक उपकरण, क्वांटम मेमोरी और अन्य घटकों का विकास इससे हो रहा है। ये वे हार्डवेयर हैं जिनके ऊपर सभी क्वांटम अनुप्रयोग टिके हुए हैं। भारत में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में लगभग 603.65 करोड़ की राशि के साथ एक मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य 2023-24 से 2030-31 तक क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों की बढ़त करना है। इस मिशन के अंतर्गत क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, मीटरोलॉजी, सामग्री एवं उपकरण के क्षेत्रों में काम होगा। नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत 4 थीमेटिक हब स्थापित किए जा रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मीटरोलॉजी, क्वांटम सामग्री और उपकरण। IIT बॉम्बे में क्यूमेट टेक फाउंडेशन ने क्वांटम सेंसिंग और मीटरोलॉजी हब की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप और पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर जैसे उपकरण विकसित हो रहे हैं। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर चिप के अंदर की समस्याओं का पता लगाने में मशीन को नुकसान न करते हुए काम करेगा। भारत में कई क्वांटम स्टार्टअप्स को वित्त पोषण मिल रही है। उदाहरण स्वरूप क्यूबिट्स नामक स्टार्टअप को भारतीय नौसेना के लिए ऐसे सेंसर्स विकसित करने हेतु 25 करोड़ की अनुदान राशि मिली है जो GPS मुक्त नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेंगे। आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली का निर्माण, जहां क्वांटम हार्डवेयर, अनुसंधान सुविधाएं, स्टार्टअप्स, उद्योग शिक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिल सकने वाले फायदे बहुत बड़े हैं। डेटा इंक्रिप्शन को क्वांटम सभ्यता में अधिक सुरक्षित बनाना संभव है। क्वांटम की वितरण के माध्यम से ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसे हैक करना या जासूसी करना लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ प्रकार की गणनाएं जैसे कि बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण, क्लिनिकल शोध, दवाइयों की खोज, सामग्री विज्ञान, अनुकूलन और ऑप्टिमाइजेशन पारंपरिक कंप्यूटरों की अपेक्षा क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा तीव्र गति से हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की खोज, भूकंपीय निगरानी, नेविगेशन, जैव चिकित्सा अनुप्रयोग, पर्यावरणीय निगरानी में नए अधिक संवेदनशील उपकरण भी विकसित हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए ये क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है, बल्कि रोजगार, स्टार्टअप्स, निर्यात, निर्माण, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि संभव है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि जब इस क्षेत्र की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, तो क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकसित होने में कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हार्डवेयर की जटिलता इसमें से प्रमुख है। क्यूबिट्स को बनाए रखना, उन्हें नियंत्रित करना और एरर्स को कम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि क्वांटम अवस्थाएं पर्यावरण से अवरोध, ताप, विद्युत एवं चुंबकीय शोर से प्रभावित होती हैं। क्रायोजेनिक सिस्टम्स में अति शुद्ध सामग्री, विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। ये महंगे हैं और इन्हें स्थापित करना कठिन है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, गहरा भौतिकी विद्याभ्यास, गणित, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान का मिश्रण चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में इस तरीके की तैयारी अभी नहीं है। यदि क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमताएं पाए, तो आज जो डेटा सुरक्षित मान लिया गया है, भविष्य में वह असुरक्षित भी हो सकता है। महंगी तकनीक और संसाधन की आवश्यकता की वजह से यह संभावना है कि कुछ विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं या देशों के हाथ तक ही सीमित रह जाएंगे। उच्च ऊर्जा खपत, विशेष क्रायोजेनिक प्रणालियां, हार्डवेयर निर्माण में कुछ प्रयुक्त सामग्री का पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तय करना कि टेक्नोलॉजी किस तरह से उपयोग हो, कौन से नियम लागू होंगे, सुरक्षित उपयोग कैसे सुनिश्चित होगा, इसका नियमन और नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में कई विकास संभव हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे सामने एक नया दरवाजा खोल रही है, जहां सूक्ष्मतम कणों की दुनिया बड़े बड़े

0: लाभ ला सकती है। भारत में जहां वैज्ञानिक, शैक्षिक, औद्योगिक स्तर पर इस दिशा में सकारात्मक पहल हो रही है, वहां ये आवश्यक है कि हम चुनौतियों को पहचानते हुए नीति, नैतिकता, सामाजिक न्याय का ध्यान भी रखें। विज्ञान की बात में आज हम जानेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में। जानकारी हमसे विशेष बातचीत कर रहे हैं पर्यावरणविद और विभाध्यक्ष पर्यावरण अध्ययन MGSU बीकानेर से प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार छंगाणी। मरुभूमि में सूरज, मौसिनराम और चेरापूंजी की वर्षा की तरह बरसता है, फिर भी यह इलाका दूसरे देशों की तुलना में सबसे जीवंत माना गया है। जीवन की, कला की, व्यापार की और संस्कृति की ऊंचाइयों को राजस्थान के समाज ने अपने जीवन दर्शन की विशिष्ट गहराई के कारण ही छुआ था। यहाँ के वृक्ष, पीपल, खेजड़ी, बड़, नीम तथा कुएं, बावड़ियां, तालाब जीवन का हिस्सा हैं। कहते हैं सैकड़ों हजारों तालाब और वृक्ष अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने और लगाने वालों की, तो दहाई थी बनाने और लगाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनाती थी और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाती थी, परंतु आजकल हम इस आधुनिक युग में इस सहज प्रक्रिया को भूलते जा रहे हैं। ये प्रक्रिया बेहद ही सरल और पारंपरिक थी और पर्यावरण संरक्षण में इन्हीं पारंपरिक तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार छंगाणी। डॉक्टर अनिल पर्यावरणविद हैं और विभाध्यक्ष हैं पर्यावरण विज्ञान विभाग महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में। अनिल जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन से ऐसे पारंपरिक तरीके हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है।
1: मेरे ख्याल से अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा जाए तो वसुदेव कुटुंबकम हम कहा करते थे
0: जी,
1: उसका मतलब भी यही है कि अगर आपको संरक्षित करना है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को तो आप उसके पूरे इकोसिस्टम को बचाइए। और उसी के चलते जो व्यवस्थाएं की जाती थी वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होती थी, वो व्यक्तिगत नहीं होती थी, और इन व्यवस्थाओं पे सामुदायिक जिम्मेदारियां होती थी
0: जी।
1: इन व्यवस्थाओं पे सबकी डिपेंडेंस होती थी, किसी भी जाति धर्म के लोग इन व्यवस्थाओं के रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेते थे और इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करते थे
0: जी।
1: तो इनका गवर्नेंस जो है टोटली कम्युनिटी के थ्रू हुआ करता था। और हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए थार मरुस्थलपुरे में बीकानेर के आसपास, तो ओरण के नाम से, गोचर के नाम से, डोली की जमीन के नाम से, जोड़ पायतन के नाम से, नाडी तालाब के नाम से, इस तरह के परंपरागत स्रोत बनाए गए थे जो कि यहाँ की जैव विविधता का और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार है। जैसा आपने अब तक शुरू में बताया था कि डेजर्ट का जो बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की जैव विविधता है, वो दुनिया में सबसे नायाब है
0: जी।
1: सबसे हार्श कंडीशन होते हुए बावजूद भी, जहाँ पे लो रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है
0: जी,
1: एरिड कंडीशंस हैं, बावजूद इसके यहाँ की जैव विविधता अपने आप में बड़ी अनूठी है
0: जी।
1: और प्राकृतिक संसाधन इतने प्रचुर हैं कि यहाँ पे करोड़ों की तादाद में वन्य जीव मिलते हैं, करोड़ों की तादाद में मवेशी मिलते हैं, जिसमें गाय, भैंस, ऊंट, बकरी आप देखें गांव में आसपास। इन सब के जीवन यापन के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए व्यवस्थाएं इस तरह से की गई कि किसी भी जाति धर्म के लोग उस नाडी तालाब पे जाके पानी पी सकते थे, किसी का भी पशुधन वहां जाके पानी पी सकता था, किसी के भी खेत में कोई चराई कर सकता था, रानी खेती होती थी उसमें। तो आज जो दिक्कत है, जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी और जो आज की मॉडर्न व्यवस्थाएं, मैं जो उसमें सीधा सीधा एक फर्क देख पा रहा हूं कि पुरानी जो भी व्यवस्थाएं थी वो सामूहिक यूटिलाइजेशन के लिए बनाई जाती थी, उसमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती नहीं थी। उसमें कोई भी राहगीर भी आके पानी पी सकता था, उस पेड़ के नीचे बैठ सकता था, उस चबूतरे पे आराम कर सकता था
0: जी।
1: और ये जो व्यवस्थाएं होती थी ये अपने आप में लैंडमार्क हुआ करते थे।
0: बिल्कुल,
1: जो पशुधन लेके माइग्रेशन पे निकलता था उसको पता था यहाँ से 10 किलोमीटर बाद एक कुआ मिलेगा, वहां पे खेली मिलेगी, मैं पानी पिलाऊंगा, वहां फला गांव में उच्च गोरण ओरण मिल जाएगा मेरे को चराने के लिए। ओरण नहीं होता था तो किसी के खेत में जाके भी वो चराई करवाता था और वहां बैठने पे उसको बोलते थे तू मेरी खेत में 5 दिन रहेगा, मैं तेरे को साफा दूंगा, मैं तेरे को जूतियां दूंगा, मैं तेरे को 5 किलो घी दूंगा। इस तरह के नेगोशिएशन चलते थे और ये अपने आप में एक नेचुरल साइकिल को रीजनरेट करता था। जो सॉइल की फर्टिलिटी आज सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने, कि हमारी 20-30% लैंड है वो कंटेमिनेट हो चुकी है, वो पेस्टिसाइड से, एक्सेस एग्रीकल्चर से, ओवरप्लोइंग से, सोइंग से, इरिगेशन से, वो सारी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है।
0: बहुत सही बताया आपने कि पुराने समय में अनिल जी इस तरीके से किया करते थे, लेकिन आज जो आधुनिक और भागदौड़ भरा जीवन है, क्या इसके अंदर ये जो पारंपरिक तरीके हैं ये अभी भी क्या मौजूद हैं और कितने प्रासंगिक हैं?
1: मेरे ख्याल से ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। बीकानेर से 15-20 किलोमीटर पे जो आसपास के गांव है जहाँ पे कैनाल का पानी नहीं पहुंचा है, पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा है, जहाँ पे लैंड यूज पैटर्न अभी भी ट्रेडिशनल ही है, गांव में जहाँ बरानी खेती होती है उनके कुएं, टांके, तालाब वैसे के वैसे, दियात्रा चले जाएं, गोदरी चले जाएं, आसपास के तालाब वैसे के वैसे संरक्षित हैं।

0: सब मौजूद हैं अभी भी।
1: जी बिल्कुल मौजूद है, हमारे से 35 किलोमीटर देशनो का ओरण पूरी दुनिया में फेमस है। देशनो के ओरण में जिस तरह की जैव विविधता है, जिस तरह की फ्लोरल डाइवर्सिटी है, जिस तरह की फॉनल डाइवर्सिटी है वहाँ पे, वो अपने आप में किसी सेंचुरी से कम नहीं है।
0: मैं यूँ कह सकती हूँ कि ये पारंपरिक तरीके अभी भी पीछे छूटे नहीं है।
1: मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा, मैं आपको पीछे
0: या
1: ले
0: हम
1: जाऊंगा,
0: इन्हें आगे लेकर बढ़े हैं अपने साथ में, क्या ये चले हैं हमारे साथ?
1: मेरे
0: में?
1: ख्याल से ये परंपरागत तरीके हमारे साथ पिछले, जब से हमें समझ आई है, सैकड़ों सालों से हमारे साथ हैं
0: जी।
1: हमने खाली इनको गौर से देखा नहीं है और हमने इसको इग्नोर किया।
0: क्या हमने इन पे बात करना बंद कर दिया है? क्या
1: मेरे
0: हम
1: ख्याल से
0: इस लेगेसी को इस जनरेशन को नहीं दे पा रहे हैं?
1: मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये हमसे चूक हुई है। हमने हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को शुरू से पढ़ाना चाहिए था, ताकि जो व्यवस्था में आज अधिकारी बैठे हैं वो अगर इन चीजों के बारे में जानते तो जिस तरह का विकास के नाम पे हम कुछ व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं वो नहीं बिगाड़ते। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ सालों पहले कोविड आया था
0: जी।
1: उस कोविड में आपको, हमको घी दूध दही छाछ की 2 महीने के लॉकडाउन में कमी नहीं आई।
0: बिल्कुल।
1: और ये कमी क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा पशुधन, हमारे मवेशी सबके सब हमें ये सारी सप्लाई पीछे से देते रहे। और उन मवेशियों को पानी किसने पिलाया? उन मवेशियों को चारा पानी कहाँ से आया?
0: वो सब नेचुरल था।
1: ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत जो हमारे स्रोत थे, यही ओरण इनमें जो चराई करते थे, यही गोचर में वो चराई करते थे। जब ट्रेनें बंद थी, ट्रकें बंद थी, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना ही ये सारा हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलता रहा और सारे के सारे वन्य जीव, सारे पशु ये जीवित रहे इन्हीं व्यवस्थाओं के आश्रय पे।
0: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये अभी भी कारगर हैं और सही मायने में ये संरक्षित हैं और हमारे लिए आज भी उपयोग में आ रहे हैं जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोविड महामारी के दौरान हुआ। आप कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वे हमारे साथ ही चल रहे हैं, वो पीछे छूटे नहीं हैं। अनिल जी, क्या ये जो नए तरीके हैं उनके साथ में पारंपरिक तरीके जो हैं वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, या फिर हम पूर्ण रूप से अभी जो नए तरीकों पर निर्भर रह रहे हैं तो वो कितना सही है, कितना उचित है?
1: मेरे ख्याल से नए तरीकों में कई जगह पे करेक्शन की गुंजाइश है अभी भी। कई नई तरीके, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, हमने ग्रीन प्रोडक्शन के नाम पे जिस तरह से हमने पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया है
0: जी,
1: आज वो एक कैंसर का बहुत बड़ा कारक बन गया
0: जी।
1: अभी वर्तमान में जो स्टडीज बन के आई है उसमें सामने आया कि मां के दूध में भी पेस्टिसाइड मिल रहा है
0: जी।
1: लेकिन परंपरागत तरीके से जब हमारे पशुधन हमारे खेतों में चरा करते थे तो वो जो गोबर और खाद के रूप में दिया करते थे उससे जमीन का जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहता था।
0: बिल्कुल,
1: उसमें किसी तरह के अननेचुरल पेस्टिसाइड का जरूरत ही नहीं पड़ता था। आज भी किसान जो खेती करता है वो अपने लिए तो एक छोटी जमीन के हिस्से में परंपरागत खेती ही करता है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो पेस्टिसाइड, यूरिया, हर तरह के केमिकल्स यूज करता है।
0: पर जो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स और नीड इतनी बढ़ गई हैं, क्या वो पारंपरिक तरीकों को अपनाने से पूर्ण हो सकता है?
1: मेरे ख्याल से व्यापक स्तर पर अगर आज भी सरकारें पाबंद कर देती है तो परंपरागत तरीके किए जा सकते हैं। जिस तरह की बीमारियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं ये ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए। डेफिनेटली हमें एक फूड का कटोरा तो हमेशा फुल रखना ही पड़ेगा, हमारी जो 140 करोड़ की आबादी है उसको खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे सरकारें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है कि हम किस तरह से परंपरागत खेती करते हुए इनको बचा सकें।
0: बिल्कुल।
1: और जो केमिकल कंटेमिनेटेड लैंड है उसको भी रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना धीरे धीरे अगर हम इसी पे सतत चलते रहे तो आने वाले समय में अन्न का संकट वैसे भी आ जाएगा हमारे सामने
0: जी। क्या समाधान हो सकते हैं?
1: समाधान यही है कि जो भी व्यवस्थाएं आज हम खड़ी करें
0: जी,
1: उनको एक तो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं ले जाएं, लेकिन
0: कम्युनिटी फॉर्म में,
1: इसको करना पड़ेगा। जो खडीन की व्यवस्थाएं पहले थी, आज
0: जो पहले था उसे आज लेकर आना होगा,
1: उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है। उसमें सरकार सहायता कर सकती है। कुछ ओरण है जहाँ पे अंग्रेजी बबूल, इस तरह की कोई विदेशी प्रजातियां आ गई है, अगर वो हटा दिया जाए तो वो फॉडर बैंक आज भी रिवाइव किए जा सकते हैं। तो हमारा जो पशुधन है वो हमारी बैकबोन है थार मरुस्थल में। एग्रीकल्चर तो कुछ कैनाल के इलाकों में, इरिगेटेड एरिया में कर सकते हैं। आज भी 60% के करीब हमारे परंपरागत खेती करने वाले किसान ही हैं
0: जी।
1: और पशुधन बहुत बड़ा एक उनका लाइवलीहुड का, सर्वाइवल का सोर्स है, जो हमें भी फूड प्रोडक्ट देता है, डेयरी प्रोडक्ट देता है। और शायद इसी वजह से जब दूध यहाँ प्रचुरता में था, बीकानेर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोचर भूमि रखने वाला शहर है
0: जी।
1: नथानिया गोचर जो दुनिया का सबसे बड़ा गोचर भूमि है वो आज हमारे बीकानेर से सटा हुआ है। वहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती है। वहाँ पे जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं उन्हीं प्रजातियों पे डिपेंडेंट रहने वाली गाय के दूध से शायद बीकानेर का रसगुल्ला इतना फेमस हुआ। वरना जो बीकानेर के बड़े घराने हैं वो बॉम्बे में, दिल्ली में वो रसगुल्ले का स्वाद पैदा नहीं कर पाए भैंस के दूध से
0: जी। जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसी तरीके का पौधा लगाना या उन्हीं के मवेशियों का संरक्षण करना वो बहुत जरूरी है। पौधारोपण हम करते हैं इस दौरान, क्या पौधे भी हमें सोच समझ लगाने चाहिए, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि
1: जी,
0: यहीं के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगने वाले पौधे हैं जो हम बाहर से वनस्पतियों को लेकर यहाँ पर उगाते हैं, सर क्या वो कितना सही और गलत है?
1: मेरे ख्याल से जो आज पौधारोपण या वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम खाली शहरों को ही देख रहे हैं
0: जी।
1: आपको गांव में जाके कम्युनिटी के बीच में बैठना है कि हम पौधे लगाना चाहते हैं, आप हमें बता दो कौन से पौधे लगाएं और कहां लगाएं, वो आपको तुरंत एक ब्लूप्रिंट

0: तैयार करके देंगे, एक घंटे में ही प्रिंट तैयार कर देंगे
1: जी।
0: कि यहाँ पे ये लगा दीजिए, यहाँ पे खेजड़ी लगा दीजिए, इस इलाके में जाड़ लग जाएगा, इस इलाके में कुमटिया लग जाएगा, इस इलाके में ये लग सकता है और यहाँ पे इसका संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल के कैंपस में गांव के ये लगा दीजिए, बिजली घर के कैंपस में ये लगा दीजिए और ये खुली कांकड़ में लगा दीजिए, इसको भेड़ बकरी भी नहीं छेड़ेगा, ये हमने कुछ ओरण का हिस्सा बंद कर रखा है
1: जी।
0: तो गांव वालों को स्थानीय प्रजातियों के बारे में, उसके फॉर्डर वैल्यू के बारे में, उसके मेडिसिनल वैल्यू के बारे में, उसके गोंद कौन कौन सा पौधे से निकलता है, फॉर्डर किस पौधे से निकलेगा, ये गांव वालों को बहुत अच्छे से पता है और कहां पे वो संरक्षित करेंगे। जब तक हम उनका इन्वॉल्वमेंट

0: के मैदान है उनको वो नष्ट कर चुका है
1: जी
0: उसको रिवाइव करने के लिए हमें बहुत बड़ा एक मिशन चलाना पड़ेगा तब जाके अंग्रेजी बबूल का हम उन्मूलन कर पाएंगे। इसी तरह शहरों में देख रहे हैं आजकल कोनोकार्पस है कई तरह की विदेशी प्रजातियों को लाके जो कि पानी कम पीती है हरी ज्यादा दिखती है खूबसूरत है लेकिन जब उसके पोलन्स निकलेंगे तो वो कई जगह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर रही है कई स्टेट ने भारत में उनको बैन कर रखा है लेकिन अभी हम जाने अनजाने कई जगह उनको लगा रहे हैं। तो पौधे लगाने में एक ही सावधानी और सुझाव है कि स्थानीय प्रजातियों को प्रमोट किया जाए।
1: आपका कहना बिल्कुल उचित है कि स्थानीय प्रजातियों को ही लगाया जाए स्थानीय लोगों के टच में रहें हम लोग वो बता सकते हैं आसानी से कि कहां पर क्या चीज लगाई जा सके। ये जो ग्रास रूट लेवल की आप बात हम अभी कर रहे थे कि स्थानीय लोगों को इस चीज का जो ज्ञान होता है यही असली में भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसकी बात आप पहले कर रहे थे। तो जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें हम पारंपरिक तरीकों से जोड़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं?
0: मेरे ख्याल से जैसे हमने विश्वविद्यालय स्तर पर एक कार्यक्रम किए हैं कि हमने जो भी हमारे पाठ्यक्रम है उनमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को हर सब्जेक्ट से ड्राइंग एंड पेंटिंग है तो यहाँ की उस्ता आर्ट क्या थी बीकानेर की थार मरुस्थल की कौन सी पेंटिंग है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। पर्यावरण विज्ञान विभाग में हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि ओरन गोचर की परंपरागत व्यवस्थाएं क्या थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या थे टांका क्या होता है झालरा क्या होता है खडीन क्या होता है बावड़ी क्या होती है तालाब क्या होते हैं नाडी क्या होती है जोड़ किसको बोलते हैं पायतन किसको बोलते हैं। और इसी के चलते हमारे जो माननीय कुलपति हैं आचार्य मनोज दीक्षित जी उन कुलगुरु ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने कैंपस के अंदर ही इनकी प्रतिकृतियां बनानी शुरू कर दी है। ओरन कैसा होता है आज बच्चों को जाके देखना तो एक बड़ा काम हो जाएगा कम से कम हमारे कैंपस में जो आएगा उसको जैव विविधता पूरी देखने को चिंकारे मिलेंगे ब्लैकबक मिलेंगे नीलगाय मिलेगी जंगली सुअर मिलेंगे। और हमने एक मंदिर था उसके आसपास ओरन भूमि की तरह उसको विकसित किया है एक अलग हिस्से में हमने एक छोटी नाडी भी बनाई है ताकि बच्चों को पता चले कि नाडी क्या होता है उसका कैचमेंट एरिया क्या होता है आगोर किसको बोलते हैं आड किसको कहते हैं ये परंपरागत गाँव में सभी बहुत अच्छे से सामान्य तरीके से जानते हैं लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इससे एक्वेंटेड करना जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं
1: तो वो अगर वहां नहीं जा सकते यदि तो आप उनको उन पारंपरिक तरीकों को बच्चों के बीच लेकर आए हैं ये बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही इनोवेटिव काम आप कर रहे हैं सर यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ किताबों से ही बच्चों को आप नहीं ये ज्ञान दे सकते हैं प्रैक्टिकली जब उनको दिखाएंगे कि क्या होता है ओरन कैसा दिखता है कैसी नाडी दिखती है तभी वो उन्हें ध्यान रहेगा याद रहेगा क्या उनकी वैल्यूज थी।
0: और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक छोटा सा सुझाव रहेगा कि हर स्कूल कॉलेज वाले अपने बच्चों को महीने में एक बार आउटिंग जरूर करवाएं कभी किसी जल स्रोत पे ले जाएं कभी किसी ओरण में लेके जाएं कभी किसी गोचर में ले जाएं कभी किसी संरक्षित जोरबीट जैसा कंजर्वेशन रिजर्व या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बना रखे हैं कभी उनको जू में लेके जाएं बायोलॉजिकल पार्क में लेके जाएं थोड़ा प्रकृति के टच में लाएंगे तो देखिए गांधी जी कह के गए थे कि मदर अर्थ जो है इस दुनिया के हर क्रिएचर की नीड पूरी कर सकती है लेकिन लालच वो किसी एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकते। आज सुबह से शाम हमारी जो दिनचर्या रहती है खाने से लेके कपड़ा पहनने तक जूते तक सारा का सारा प्राकृतिक संसाधन हमें मदर नेचर ही देती है प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन यापन में है इसलिए इसको जिस तरह से हम बचा सकते हैं इसका प्रबंधन कर सकते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उचित रहेगा।
1: बहुत खूब कहा सर आपने। इसी क्रम में मैं आप श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि 28 जुलाई को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मना रहे हैं। अनिल जी इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और आपने अभी बखूबी बताया कि कैसे हम ये कर सकते हैं। ऐसे में अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरे ख्याल से हमारे आसपास कम से कम ये कर लें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण किस तरीके से हो सकता है और हम बचा नहीं सकते तो कम से कम उनका विनाश नहीं करें।
1: बिल्कुल
0: हम जिस तरह की पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं जिस तरह का प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ये हम कम से कम करें। जल का जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं गाड़ियां धोने में सड़कें धोने में घर धोने में ये नहीं करें। इन संसाधनों का कीमत समझे और कम से कम नहीं तो पेरेंट्स को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि साल में एक बार उस बच्चे को बर्थडे पे इतना सा एक आदेश दे दीजिए कि आज सुबह से तू जब शौचालय जाएगा तब से लेकर रात को सोने तक का पानी का ग्लास तुझे अपना कहीं से ला के व्यवस्था करनी उसको पता चल जाएगा पानी आता कैसे।
1: बहुत
0: आज हम टैप से जो पानी दे रहे हैं उसको पानी की कीमत नहीं पता। आज गांव में जाके देखिए लोग बाहर जूते चप्पल खोल के पानी के कुएं पे चढ़ते हैं इतना सम्मान करते हैं उनका
1: और देवता के समान मानते हैं।
0: बिल्कुल तो जल देवता हमारे शास्त्रों में माना गया है।
1: बिल्कुल अनिल जी बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से आपने हमें पारंपरिक पर्यावरण संरक्षण के महत्व और उसकी उपयोगिता से परिचित कराया। निश्चित ही हमारी प्राचीन परंपराओं में छिपा ये ज्ञान आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकता है। आपके विचारों से हमें प्रेरणा मिली है और श्रोताओं को भी मिली होगी कि आधुनिक विकास के साथ पारंपरिक उपाय को अपनाना ही पर्यावरण संकट से निपटना संभव है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: कार्यक्रम में अब हम जानेंगे हमारे आज के प्रेरणादायक वैज्ञानिक के बारे में और आज की हमारी प्रेरणादायक वैज्ञानिक है मिसाइल महिला डॉक्टर टेसी थॉमस। टेसी थॉमस का जन्म अप्रैल

0: 1963 को केरल के अलपुजा में हुआ था। स्कूली शिक्षा उन्होंने अलपुजा से ही प्राप्त की और फिर गृह राज्य केरल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रिसूर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद उन्होंने एमटेक किया और फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए भी। पीएचडी की उपाधि उन्होंने डीआरडीओ के अंतर्गत प्राप्त की, जिसमें उनके शोध का विषय था मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली। 1988 में वे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ से जुड़ी और मिसाइल कार्यक्रमों पर काम शुरू किया। उन्होंने अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। विशेष रूप से अग्नि 4 और अग्नि 5 कार्यक्रम की वह परियोजना निदेशक रही। टेसी थॉमस को अक्सर मिसाइल महिला ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड प्राप्त किया। हाल ही के वर्षों में उन्हें अन्य कई सम्मानों से नवाजा गया। टेसी थॉमस ने रक्षा और मिसाइल कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया जहां की महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी कम थी। उनके जीवन में पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक सीमाएं जैसी बाधाएं थी, जैसे शिक्षा ऋण लेना और एक ऐसे समय में आगे बढ़ना जब संसाधन कम हो, पर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम और तकनीकी नवाचार की मदद से उन्होंने सफलता पाई। डॉक्टर टेसी थॉमस की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे ज्ञान, समर्पण, नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी व्यक्ति, चाहे सामाजिक या लैंगिक बाधाएं हो, उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। उनका योगदान न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि महिलाएं रक्षा विज्ञान के कठोर क्षेत्र में भी कदम जमा सकती हैं। समय है विज्ञान की दुनिया के आखिरी और आपके पसंदीदा सेगमेंट क्या आप जानते हैं का। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं विज्ञान से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपको हैरान भी कर देंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ साइंटिफिक अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में।
1: क्या आप जानते हैं अगर आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि आप वहीं रुक गए हैं, कभी अंदर नहीं गए।
2: क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और खून नीला होता है क्योंकि उसमें तांबा होता है।
1: क्या आप जानते हैं आपकी नाक 50,000 अलग अलग खुशबुएं याद रख सकती है, यानी ये अपने आप में एक स्मेल लाइब्रेरी है।
2: क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष पूरी तरह खामोश नहीं है, वहाँ प्लाज्मा वेव्स की आवाजें होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक खास उपकरणों से सुन सकते हैं।
1: क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग रोज इतनी बिजली बनाता है कि उससे हम एक छोटा सा बल्ब जला सकते हैं।
2: क्या आप जानते हैं शार्क पेड़ों से भी पुरानी है, धरती पर शार्क 400 मिलियन साल से है जबकि पेड़ सिर्फ 350 मिलियन साल से हैं।
0: ये थी हमारी आज की विज्ञान यात्रा। नई खोजों, रोचक तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरे इस सफर में हमारे साथ बने रहें। याद रखें, विज्ञान न केवल सवालों के जवाब देता है बल्कि नए सवाल पूछने की प्रेरणा भी देता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बरखा थानवी व्यास का नमस्कार।

ये था विज्ञान के नए आयामों से रूबरू करवाता हमारा मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। आलेख एवं प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, परिकल्पना एवं संयोजन था श्री अमित सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। कार्यक्रम में आपने सुनी चर्चा क्वांटम क्रांति विज्ञान की नई दिशा, प्रेरणादायक वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस और जाने कुछ रोचक वैज्ञानिक तथ्य। आलेख और प्रस्तुति श्रीमती बरखा तानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह का।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को है प्रस्तुत है हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए।

0: इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहनें और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्च को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन राग नट भैरव पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय जवान।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

बॉर्डर फिल्म का गीत अभी आपने सुना रूप कुमार राठौड़ के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है आरजू, स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है सांस।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

यारिया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना केके के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मोहरा। स्वर है उदित नारायण और साधना सरगम के।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कप...

0: कौन जुड़े हैं? हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ।
0: उत्तम चंद जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद जी।
0: जी, हमारा ये कार्यक्रम हेलो बीकानेर आप सभी श्रोताओं के कारण ही देखिए इतना अच्छा बन पड़ता है कि इतने अच्छे अच्छे श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं हमारे, और वो सभी हमसे हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और बीच बीच में कई बार नए श्रोता भी जुड़ते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, नए श्रोताओं भी जुड़ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं,
0: जी
1: और पुराने श्रोता आज भी कॉल करते हैं, फरमाइशी खत लिखते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: ये लगाव है ढोला मारू चैनल से।
0: जी हाँ
1: आज मैडम जो सुराना मोल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराना जी है,
0: जी
1: नामचीन श्रोता रह चुके बीकानेर के, और उनका मतलब रेडियो के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था और हर केंद्र पर उन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है।
0: जी हाँ
1: तो अभी क्या है, अब सुराना जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अभी क्या है कि जो वाइफ है ना भाभी जी,
0: जी हाँ
1: उनका कॉल आया मेरे पास, बोले कि आप फोन करना और उनका जिक्र जरूर करना, मैं प्रोग्राम सुनूंगी अब हर बार।
0: ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी जो यादें हैं, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो हमारे जीवन में किस प्रकार जुड़ी हुई रहती हैं, और खासकर जो परिजन हैं उनके, जो उनके उनकी जो संगिनी रही हैं, उनके लिए तो कितनी बड़ी बात है कि वो आपको ये फोन करके बोल रही हैं कि आज वो नहीं है। तो चलिए, उनका नाम आकाशवाणी बीकानेर में आए जरूर। पूरे आकाशवाणी को बहुत दुख है कि सुराना जी के जाने का, और काफी समय से वो परेशान चल भी रहे थे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और यूं अचानक चले जाएंगे ये हम सब किसी ने भी नहीं सोचा था।
1: तो उन्हीं की याद में, उन्हीं को समर्पित एक गीत सुनेंगे हम।
0: जी हाँ बताएं,
1: तो
0: सही कह
1: उन्हीं
0: रहे
1: की
0: हैं।
1: याद में एक गीत है रानी रूपमती का, आ
0: जी
1: लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
0: सही, अच्छा गाना है ये। और देखिए, कहते हैं ना कि जो चले गए हैं उनके लिए हम अपना कितना भाव प्रकट कर सकते हैं, वो ये गीत एक बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छा माध्यम है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपकी जब भी बात हो उनकी धर्मपत्नी से, तो आप उन्हें जब भी ऐसा लगे कि वो यहाँ पे फोन कर सकती हैं, तो वो खुद भी फोन करें, ताकि सुराना जी के
1: बिल्कुल,
0: माध्यम जो बातें हैं सुराना जी की, वो हम उनके माध्यम से ही शेयर करते रहेंगे।
1: मैं बोलूंगा उनको कि
0: जी
1: अगर वो कॉल करे तो कर दे। तो
0: जी जी जी सोनी जी, बहुत अच्छा किया आप, संदेश हम तक पहुंचाया।
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही
0: जी
1: प्रार्थना करते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल,
1: धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद। आइए सुनते हैं हम सभी की पसंद पर सुराना जी के लिए ये गीत।
1: हाँ जी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: हाँ जी,
0: नमस्कार
1: नमस्कार जी।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही।
0: डॉक्टर शाही का बहुत बहुत स्वागत है हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जी।
0: जी
1: आज शिकारी फिल्म का गाना सुना दे, काफी अपने टाइम में मशहूर हुआ था,
0: जी हाँ,
1: चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं।
0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है, लता
1: हाँ
0: जी का साथ
1: मोहम्मद
0: है। और सबसे बड़ी
1: जी
0: बात ये डॉक्टर साहब कि चमन के जो फूल हैं वो अपने आप में बड़े बेमिसाल होते हैं, है ना?
1: बिल्कुल,
0: और
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, फूल है जिनमें गुलाब का फूल है, ये औषधीय गुण रखते हैं। गुलाब का फूल है, गेंदे का है, और आपके सदाबहार का है, ये सब ऐसे फूल हैं जो कि औषधीय व सुगंधित गुण रखते हैं। तुलसी के फूल हैं,
0: जी
1: तो इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे बीमारियों का इलाज करने में भी काम आते हैं इनके रासायनिक तत्व।
0: बिल्कुल
1: और वैसे मार्केट के अंदर हमारे पूजा स्थल पे भी ये रखे जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो इन फूलों की तो महिमा बहुत अपरंपार है।
0: अप
1: अगर इस पे बोलना शुरू करें तो अंत ही नहीं
0: जी, सही
1: होगा।
0: कि गुलाब की बात अगर हम करते हैं तो गर्मी के मौसम में जो ठंडक है उसकी, हम उसका जो है वो शरबत बना करके भी पी सकते हैं। इसके
1: हाँ,
0: अलावा
1: गुलाब में तो
0: हाँ
1: ऐसा होता है कि इसमें सबसे बढ़िया गुलाब जो है कश्मीर में पाया जाता है।

0: जहाँ वैरायटी है
1: अच्छा
0: वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, और उसके गुलाब का जो इत्र निकलता है, सेंट निकलता है, वो 5 लाख से 10 लाख रुपए किलो तक का होता है। ज्यादा तेल निकलने के बाद जो चीज बच जाती है वो उसका गुलकंद बन जाता है।
1: गुलकंद बन जाता है हाँ।
0: तो इस तरह से इसका और जो पानी आता है आसवन विधि द्वारा जब तेल निकालते हैं, जो पानी आता है वो पानी
1: हाँ।
0: गुलाब जल के नाम से जाना जाता है
1: हाँ।
0: और उसका अपना महत्व है।
1: देखिए तो कहने को हाँ, कहने को एक गुलाब है लेकिन कितनी सारी चीजें हमें मिल गई उससे।
0: हाँ देखिए गुलाब से कितनी मिल गई है, अपने घर में भी लगाना चाहिए, सुंदर है पौधा, तो अपने गमले में लगाएं या अगर आपके गार्डन है छोटा उसमें गुलाब लगाना चाहिए।
1: मेहनत मांगता है गुलाब का पौधा लगाने में,
0: बिल्कुल मेहनत मांगता है तभी तो इसके अंदर अच्छे गुण है।
1: जी जी जी
0: इसको टाइम टाइम पे निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और प्रूनिंग करनी पड़ती है, और फिर इसके फूल आते हैं उनको रख रखाव उनका बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। ऐसे नहीं है इधर उधर रख दिया फिर वो उनके पत्ते
1: काले से पड़ जाते
0: काले,
1: हैं हाँ,
0: काली पड़ जाती है। एक चीज है और अनेक इसके उपयोग हैं,
1: उपयोग हैं, फायदे हैं,
0: उपयोग लिए जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो आपने गाना पहले से सोच लिया था कि मैं ये वाला गीत चुनूंगा और उसके हिसाब से मैं फिर फूल की बात करूंगा और फूलों में भी गुलाब की बात करूंगा।
0: तो जनरल बात है, वैसे मैंने तो गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मैंने सोचा आज थोड़ा फूलों की ठंडक ली जाए, वादियों की ठंडक लेता रहता हूँ कभी
1: गानों के माध्यम से ही। अशोक जी अपन सब मिलकर के महसूस करते हैं ये फूलों की ठंडक। धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0151-2528-041 और 0151-2528-042। दोनों ही लाइनें हमारी इस कार्यक्रम के लिए चालू हैं, तो आप बुधवार को 11 से 12 के मध्य फ़ोन लगा सकते हैं और बन सकते हैं हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम के श्रोता साथी। श्रोताओं, आइए देखते हैं हमारे अगले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: हरिओम सर, नमस्कार।
0: नमस्कार सुभाष जी, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताओ।
0: बस बढ़िया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है।
1: का तो आशीर्वाद तो पता ही नहीं था ना।
0: जी बिल्कुल।
1: लोग है ना, कितनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मकान बनाते हैं, केस करते हैं, लेकिन उनको दो रोटी नसीब नहीं होती। अगर उसकी कृपा होगी तो आपको घर बैठे ही मिलेगा,
0: मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आप मांगोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मांगोगे बहुत कुछ
0: बहुत
1: मिलेगा।
0: कुछ मिलेगा जी।
1: ये धर्म के चार लक्षण बताए हैं, पहला सत्य बोलना, दूसरा दान है, तीसरा क्या है, दया करना। कितने ही गरीब है, कितना ही कैसा भी है, उसको कुछ दोगे उसकी आत्मा क्या है कि आपको आशीर्वाद देगी
0: जी।
1: क्या, इसलिए क्या है कि दया की भावना भी रखें, दया पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और चौथा है तप, मतलब इंद्रियों पर विजय पाना, इंद्रियों को काबू रखोगे तो वो भी भगवान कहते हैं उस पर प्रसन्न होते हैं,
0: जी।
1: पाप नहीं होंगे। जिन्होंने इंद्रियों पर काबू कर
0: हाँ,
1: रखा है
0: सही
1: उनके
0: बात।
1: जीवन में कभी पाप होगा ही नहीं।
0: अच्छा संदेश है सर आपका और सभी तक पहुंचेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भी सुन रहे हैं हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे इस संदेश के माध्यम से।
1: पहले तो आप होंगे,
0: हाँ
1: इजी
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: जी बिल्कुल। तो बताएं सुभाष जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: पुरानी फिल्म अगर आपके पास है,
0: जी
1: पतिता का,
0: हाँ
1: दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी,
0: जी।
1: बहुत ही अच्छी फिल्म थी अपने जमाने की, ये तलत महमूद की आवाज में है,
0: जी
1: अंधे जहां के अंधे रास्ते जाएं तो जाएगा। इसको आप, मेरा निवेदन है, अच्छी तरह पूरा सुने
0: जी,
1: तो इसमें कुछ न कुछ सीखने को
0: सीखने
1: मिलेगा।
0: को मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है सुभाष जी कि आपके इस गीत को हम सुनते हैं और सुनवाते हैं सभी श्रोताओं को, और साथ में आप भी सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: ठीक है सर,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: सर।

0: श्रोताओं, ये देखते हैं हमारे अगले साथी हमारे साथ में कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रामेश्वर पवार बोल रहा हूँ, बद्दियों की बड़ी बात बीकानेर से।
0: रामेश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, धन्यवाद तो देखिए आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो फोन आ रहे हैं वो अटेंड करना और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाना, ये हमारे आकाशवाणी की।
1: लगते हैं आपके
0: जी, चलिए रामेश्वर जी बताएं आज का क्या संदेश देना चाहते हैं।
1: नहीं ठीक है, गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है,
0: हाँ
1: इससे थोड़ा बचाव रखें
0: हाँ
1: अपने का, बच्चों का, बच्चों का, वृद्धों का, यही है और तो क्या है।
0: नहीं, एक चीज आपने कही जो कि गर्मी से बचाव रखना है, ये बहुत ही
1: बिल्कुल
0: जरूरी
1: सही
0: है।
1: बात है, गर्मी
0: सबसे
1: से
0: अच्छा
1: बचाव
0: संदेश
1: रखें।
0: ही यही है। आज की तारीख में तो हम देख रहे हैं पारा जो है वो 42-45 के पार जा रहा
1: हाँ
0: है।
1: मैडम,
0: ऐसे में देखिए, जो दिन बाहर काम करना है, जिनको खुले में काम करना है, उनको तो
1: बहुत
0: करना
1: बहुत
0: ही है,
1: दोहरा काम है।
0: दोहरा काम है, तो उनको तो करना तो है ही, लेकिन सावधानी बरतते हुए
1: मैडम
0: कर लें। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं रामेश्वर जी?
1: पुरानी फिल्म पतंगा,
0: जी हाँ।
1: चितल कर की आवाज में है, मैं उस देखा, मैं साथ में मेरी क्या गई रंग किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी
0: जी
1: याद जताती है।
0: जी, अब तो टेलीफोन क्या है, अब तो सर वीडियो कॉल हो गई है ना, टेक्नोलॉजी के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने गानों की बात ही अलग है, उनकी मधुरता ही अलग है।
1: बिल्कुल मैडम,
0: जी
1: सही बात है,
0: तो रामेश्वर जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: धन्यवाद।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: आइए श्रोताओं, देखते हैं हमारे अगले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, आकाशवाणी बीकानेर।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: जी, मैं वृंदावन कॉलेज से राजेंद्र बिडवालकर बोल रहा था।
0: जी राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी राजेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं तो रिटायर हो गया हूँ 16 में।
0: अच्छा अच्छा,
1: घर पे ही रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: अब मेरी क्या विजन लॉस हो गई है काफी, 90% तक लॉस हो गई है, तो घर पे ही
0: अच्छा,
1: रहता हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा, विजन लॉस हो गया है सर।
1: विजुअली हैंडीकैप हूँ।
0: जी जी जी, तो बाकी वैसे अपने काम तो सारे कर लेते हैं सर?
1: सारा काम करता हूँ, घर का पूरा काम करता हूँ
0: जी जी,
1: एकदम।
0: बस थोड़ा बाहर निकलने में परेशानी होती होगी।
1: बाहर निकलने में परेशानी होती है, बाकी
0: हाँ
1: तो
0: सब
1: कोई
0: कर लेते
1: दिक्कत
0: हैं।
1: नहीं है।
0: चलिए,
1: और बाकी सब जगह रसोई में जाता हूँ तो वहाँ रेडियो ले जाता हूँ, ऊपर रेडियो है, नीचे
0: अच्छा
1: रेडियो, सब जगह।
0: हाँ हाँ हाँ
1: बचपन से रेडियो का बहुत शौक है।
0: सर, ये तो हमारे जितने भी श्रोता हैं ये सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, कि वो हम इतने नियमित हमारे श्रोता हैं और
1: हाँ
0: इतने मतलब तत्पर हैं आकाशवाणी के लिए, इतने शिद्दत से उसे
1: बिल्कुल
0: सुनते
1: बिल्कुल
0: हैं कि हम तो गदगद हो जाते हैं सर।
1: बिल्कुल, आप
0: जी
1: लोग इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं ना, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम
0: सर।
1: आपके, और आपको बहुत बहुत
0: हाँ
1: शुभकामनाएं 90 वर्ष पर आकाशवाणी रेडियो
0: जी
1: की, है
0: जी
1: ना।
0: हाँ, 90वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और देखिए
1: हाँ
0: तरह तरह के
1: बिल्कुल,
0: प्रोग्राम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
1: हाँ
0: राजेंद्र जी कि अगर आप जैसे अच्छे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं तो हम फिर कार्यक्रमों को अगर अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा,
1: नहीं,
0: है ना।
1: प्रोग्राम आपके यहाँ के प्रसारित होते हैं जो सारे अच्छे हैं, मैं तो सारे
0: जी
1: प्रोग्राम सुनता हूँ,
0: जी
1: किसानों वाला भी सुनता हूँ,
0: जी
1: महिला
0: जी
1: जनती है, युवा
0: जी
1: युवाणी भी है, उसमें भी अच्छे बच्चों बच्चियों के वो क्विज आता है ना आज, कभी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से वो
0: हाँ
1: हुआ था,
0: हाँ
1: कभी डूंगर
0: जी
1: कॉलेज हुआ
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल
1: छोटे छोटे
0: बुझी।
1: टॉपिक पर बहुत अच्छे विचार देते हैं बच्चे अपना।
0: हाँ नहीं सर, सही बात कह रहे हैं कि पूरे आकाशवाणी बीकानेर की टीम पूरी मेहनत करती है सर सारे
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रमों के
1: मेहनत।
0: लिए। बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी आपसे बात करके। अब गीत बता दें, आप कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: दिलक मंदिर का टाइटल सॉन्ग है जो
0: जी
1: मोहम्मद रफी साहब की, बड़ी बहुत अच्छी आवाज में है,
0: आवाज में,
1: बहुत
0: हाँ
1: गजब है रफी
0: जी,
1: साहब।
0: रफी साहब की आवाज में है और साथ दे रही हैं सुमन कल्याणपुर।
1: जी
0: धन्यवाद
1: मेरा मित्र सुनना चाहता है इसको भी,
0: जी। बताएं
1: सुरेश जी गहलोत, वो भी
0: जी
1: बहुत पसंद करते हैं ये तो, उनको रेडियो बहुत सुनते हैं वो भी।
0: जी जी तो आइए आपके और आपके मित्रों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं ये देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हैं। हेलो
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: बल्लभ गार्डन बीकानेर से मैं एलसी शहजादा बोल रहा हूँ।
0: शहजादा जी का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: फिल्म कांच और हीरा।
0: कांच और हीरा
1: जी।
0: अच्छा बताएं। बोल बता दें।
1: नजर आते हैं मंजिल
0: जी, बहुत पुराना गाना है।
1: हाँ जी।
0: लेकिन मंजिल तो सामने ही है, मंजिल क्यों नजर नहीं आ रही है?
1: मंजिल तो ढूंढनी पड़ती है मैडम, सामने कहाँ मंजिल।
0: नहीं, मंजिल तो सामने ही है। हाँ, प्रयास करने पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए।
1: खैर वो तो है,
0: बहुत प्रयास करने पड़ते हैं शहजादा
1: जी।
0: जी
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: मंजिल के लिए करना पड़ता है।
0: हाँ, कई बार मंजिल इतनी दूर लगने लग जाती है कि हम हताश भी होने लग जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। लेकिन ऊपर वाला है ना, वो अपना कर्म करता है और देखिए कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: सबको फल मिलता है ऐसी बात।
0: बिल्कुल, सबको फल मिलता है, इसीलिए कहते हैं कि अपना कर्म हमें जरूर करना चाहिए। फल तो हमें ईश्वर
1: बिल्कुल
0: देने के लिए बैठे ही हैं
1: जी।
0: जी। सजादा जी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, आपकी पसंद पे हमें आइए सुनते हैं ये गीत।
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, ये देखते हैं हमारे अगले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो मैडम जी, राम राम सा।
0: राम राम सा, राम राम सा, कौन बोल रहे हैं
1: जी? हम संतोष खड़से बोल रहे हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र।
0: वाह क्या बात है, महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं आप, और देखिए आप राजस्थानियों से राम राम सा कह रहे हैं, कितनी खुशी की बात है।
1: ये सब आप ही की देन है, आप ही के संस्कार है, आप ही से मिला हुआ ज्ञान है। आकाशवाणी को सुनते सुनते हम हमारी यह कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि आपकी संस्कृति से भी हम थोड़ा जुड़ जाए और आत्मसात करें।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आप आपस में संस्कृति की बात जब हम करते हैं तो जुड़ाव खुद ब खुद हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: जी, जी बताएं संतोष जी, आज क्या संदेश दे रहे हैं?
1: संदेश तो एक हम यह कहना चाहते हैं मैडम जी कि आकाशवाणी के जो वरिष्ठ श्रोता बीकानेर के रहे हैं नरेंद्र सुराणा जी,
0: जी
1: वरिष्ठ श्रोता थे, उन्होंने एक बड़ा लंबा अरसा रेडियो के प्रति व्यतीत किया है और आकाशवाणी बीकानेर के भी वो नियमित श्रोता रहे हैं। तो इस बात से हमें बहुत दुख हुआ है और आपको यह बताते चले कि हमें आकाशवाणी बीकानेर से जोड़ने में, यहाँ के कार्यक्रमों की जानकारी देने में और यहाँ से कार्यक्रमों से जुड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हमें बहुत बड़ी सहायता की है
0: जी।
1: तो उनकी ये जो हमारे प्रति उनकी ये जो जुड़ाव था हमारे लिए, हमारे प्रति उनकी जो ये दोस्ती थी, हम कभी भूल नहीं पाएंगे मैडम जी,
0: जी, जी।
1: आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं और आपके कार्यक्रमों में जो हम हिस्सा लेते हैं
0: जी,
1: ये सब सुराणा जी की ही देन है मैडम जी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी।
1: जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, बीच बीच में उन बीकानेर के कार्यक्रमों के संदर्भ में हम आपस में चर्चा भी
0: करते रहे हैं।
1: तो आज हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, बीकानेर से जुड़े हुए हैं, तो इनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान श्रोताओं को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हम परमात्मा
0: प्रार्थना करते हैं।
1: प्रार्थना करते हैं और आपसे एक हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे दीदी कि देखिए कोई जो एक अपने क्षेत्र का श्रोता होता है
0: जी,
1: तो उन्होंने एक अपने जिंदगी का, अपने जीवन का बहुत बड़ा अरसा रेडियो को
0: समर्पित किया है। बिल्कुल सही सर,
1: है ना?
0: बिल्कुल अच्छी अच्छी भाव आपके, अच्छी श्रद्धांजलि आपकी, वो आप उनके लिए इतनी सोच रख रहे हैं, इतना अच्छा संदेश है का हम सभी के लिए कि सुराणा जी के जाने का दुख देखिए पूरे आकाशवाणी परिवार को है ना।
1: आज उन्हें श्रद्धांजलि देते स्वरूप आप कोई भी एक श्रद्धांजलि स्वरूप श्रद्धांजलि गीत जरूर सुनवाइए और इसी गीत के माध्यम से हम उनके स्मृतियों को नमन करेंगे, उन्हें

0: देखिए पूरे आकाशवाणी परिवार को है ना।
1: आज उन्हें श्रद्धांजलि देते स्वरूप आप कोई भी एक श्रद्धांजलि स्वरूप श्रद्धांजलि गीत जरूर सुनवाइए, और इसी गीत के माध्यम से हम उनके स्मृतियों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छी बात है आपकी कि सुराणा जी की याद में हम एक गीत आपको सुनवा देते हैं और सभी श्रोता सुनते हैं। आइए, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
1: जी जी धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हेलो बीकानेर कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ते हैं, बातें करते हैं बहुत सी, और देखिए श्रोताओं के हमें नए नए विचार भी सुनने को मिलते हैं। कार्यक्रम में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें भी निकल के आती हैं जिनके माध्यम से हमारा मन बड़ा द्रवित भी होता है कि वाकई में इंसान कितना टूट जाता है जब उसके ऊपर दुख आता है। लेकिन वहीं जब परिस्थितियां बदलती हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ ईजी हो जाता है और हम वापस से अपने उसी दौर में लौटने लगते हैं। धीरे धीरे करके हम वही सब चीजें अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं, जैसे कि डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल फिर से खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में भी खोए पल को हम वापस नहीं ला सकते, मगर अपने हौसलों और विश्वास से आने वाले हर पल को हम खूबसूरत बना सकते हैं। और यही खूबसूरती हमारे जीवन की है कि हम हर पल एक नया प्रयास करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में खुशियों के पल कभी भी खत्म न हो। हौसला टूटता जरूर है, लेकिन हमारा विश्वास अडिग होता है तो वो हौसला हमारा हमारे लिए शान बन जाता है, जान बन जाता है। इन्हीं हौसलों की दुनिया में श्रोताओं आप और हम सभी रहते हैं और ये हौसले और जज्बे को ही सलाम है जो हम अपने जीवन में चार चांद लगाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में जो हमने चार चांद लगाए हमारे श्रोताओं के माध्यम से, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है हेलो बीकानेर। हेलो बीकानेर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आकाशवाणी बीकानेर की पूरी टीम का सहयोग रहा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रेवत राम लेघा, संयोजक थे अमित सिंह और मैं थी आपके साथ प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। कार्यक्रम के सूत्रधार थी श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा, संयोजन श्री अमित सिंह का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

0: इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जाँच करें, साफ करें और ढकें। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इस सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आप आनंद लीजिएगा दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा दिन में 1:05। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे स्मार्टफोन जो जीवन आसान बनाए, कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी, परिवार में शांति और आपसी समझ, और साथ ही आप सुनेंगे

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर कुछ बात और एक वार्ता, संघर्ष से संवाद तक, शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी। वार्ताकार होंगे श्रीमती रेखा गुप्ता। हमारी ये सभा दिन में 3 बजे संपन्न होंगी।

हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा साहित्य और युवा। लघु जानकारी के विषय रहेंगे सिक्किम दिवस, शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और पारिस्थितिकी तंत्र। आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। संध्या 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे संध्या 6:40 पर हमारी आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़। सुगम संगीत सुनिएगा संध्या 7:45 पर और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा।

लोक संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर, और फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 12:10 हो रहे हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार हैं सलाउद्दीन अहमद। आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सलाउद्दीन अहमद के गाए कुछ गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत, गीत को गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। फिल्म का नाम है मनचली। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म यकीन का ये गीत। गीत को लिखा था हर्षद जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए श्यामल मित्रा के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा है इंदिवर ने, युगल स्वर है आशा भोंसले और किशोर कुमार का, और फिल्म है आनंद आश्रम।

0: कमलेश अवस्थी के गाए फिल्म प्यासा सावन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वगणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है।

0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से सफ़ेद सोना यानी नरमा की फसल लहलाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले एक दो दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिनों से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिन भर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें CBSE ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं नेहा गोस्वामी और कोमल पुरोहित।

0: मैं नेहा गोस्वामी फिर आपके बीच कुछ अपनेपन भरी बातें लेकर उपस्थित हूँ।
1: सखियों, आपको मेरा भी स्नेहिल नमस्कार। जीवन की भागदौड़ में जब मन थोड़ा ठहर कर अपनों से बात करता है तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं कोमल पुरोहित आज फिर आपके साथ कुछ ऐसे भाव बांटने आई हूँ जो शायद हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।
0: सखियों, अभी हाल ही में नीट के बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई और उनका डॉक्टर बनने का सपना जैसे धुंधला हो गया और वजह रही पेपर आउट होना। सोचिए ये बात हमें कितनी आहत कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा उन लाखों बच्चों को चोट पहुंचा रही होगी जिन्होंने पूरे साल दिन रात मेहनत की, सपने देखे, उम्मीदें बांधी और हाथ आई तो बस निराशा।
1: बिल्कुल नेहा, कई बच्चे ऐसे समय में खुद को बिल्कुल टूटता हुआ महसूस करते होंगे। उन्हें लगने लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई और यही वो समय होता है जब पेरेंट्स को, शिक्षक को या जो उनके मेंटोर हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए उनको।
0: और कोमल, ऐसे समय में बच्चों के मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। निराशा, गुस्सा, डर, बेचैनी सब एक साथ मन में हावी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है नियंत्रण की।
1: और जीवन में बहनों नियंत्रण बहुत जरूरी है ना नेहा?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मन में आने वाले नकारात्मक विचार हमेशा नहीं रहते, वो कुछ पल के लिए आते हैं। अगर उन कठिन पलों में हम अपने मन और भावनाओं को संभाल लें तो हम अपने अंदर चल रहे द्वंद से जीत सकते हैं।
0: और कोमल, ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, हमारे जीवन में भी रोज कई परिस्थितियां आती हैं। कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, तो कभी सड़क पर चलते हुए भी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम हर छोटी बात पर बिफर जाएं, अपना आपा खो दें, तो बाद में अक्सर यही सोचते हैं कि काश उस समय थोड़ा नियंत्रण रखा होता।
1: बिल्कुल।
0: तो बात इतनी ना बिगड़ती।
1: और नेहा, हम ये भी अपनी सखियों को बता दें कि नियंत्रण का मतलब दब जाना या चुप रहना बिल्कुल नहीं होता। नियंत्रण का अर्थ है सही समय पर सही शब्द है उसको चुनना और साथ में अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करना। जहाँ अपनी बात रखना ज़रूरी हो वहाँ ज़रूर रखिए, लेकिन शब्द ऐसे हों जो रिश्ते भी बचा ले और बात भी समझा दे।
0: क्योंकि कई बार एक पल का गुस्सा वर्षों का रिश्ता खराब कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना कोमल? और कई बार एक पल का धैर्य बिगड़ती हुई बात को संभाल भी लेता है।
1: बिल्कुल सही नेहा। आज बच्चों को सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो किसी ऐसे अपने की है जो उनकी बात सुने भी और समझे भी। उन्हें ये आस दिलाए कि एक परीक्षा उनकी जिंदगी से बड़ी नहीं होती, हार और निराशा जीवन का अंत नहीं है।
0: और अभी तो हम हारे भी नहीं है ना बच्चों? बस अब हमें अपनी कलम रूपी तलवार से वापस नीट रूपी युद्ध लड़ना है। और याद रखिए कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता, लेकिन अपने मन और व्यवहार का नियंत्रण रखकर हम हर मुश्किल समय को थोड़ा आसान जरूर बना सकते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को संभालने में होती है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोमल, कभी कभी मुझे लगता है कि प्रकाश सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी नहीं, बल्कि वो एहसास है जो मन में उम्मीद जगा देता है।
5: बिल्कुल।
4: सुबह की पहली किरण जैसे धीरे धीरे कहती है कि हर अंधेरी रात के बाद नया उजाला जरूर आता है। शायद इसी वजह से प्रकाश को हमेशा ज्ञान, सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की ये प्रेरणादायक पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि विपदाएँ आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में भी जैसे संघर्ष के अंधेरे में हौसले का प्रकाश दिखाई देता है।
5: बिल्कुल नेहा, बहुत अच्छी पंक्तियां बताई आपने। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी हमें यही याद दिलाता है कि प्रकाश हमारे जीवन की कितनी बड़ी जरूरत है। सूरज की रोशनी से लेकर बच्चों की पढ़ाई, अस्पतालों में इलाज और आज की आधुनिक तकनीक तक हर जगह प्रकाश का महत्व जुड़ा हुआ है। मैंने मोबाइल, इंटरनेट, कैमरा, सोलर ऊर्जा और लेजर जैसी सुविधाओं के पीछे भी प्रकाश का विज्ञान काम करता है। और हरिवंश राय जी की ये पंक्तियां जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर

0: नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच्चे नेहा यही तो उजाले की असली पहचान है, उम्मीद कभी हार नहीं मानती।
1: बिल्कुल सही कोमल, सच कहूँ कोमल, सबसे ज़रूरी मन का प्रकाश होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर सोच में अंधेरा हो जाए ना, तो चारों तरफ रोशनी होते हुए भी इंसान रास्ता भटक ही जाता है। ज्ञान और अच्छी सोच ऐसा उजाला है जो इंसान को सही दिशा देते हैं। मुझे महादेवी जी की संवेदनाओं से भरी ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धुर में मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक चल, पुलक पुलक मेरे दीपक चल। इन पंक्तियों में दीपक सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है।
0: बिल्कुल नेहा, और नेहा अगर हम अपनी ही बात करें तो हम खुद ही पूरे घर की रोशनी होती हैं। माँ बनकर बच्चों के सपनों को हम उजाला करती हैं, बेटी बनकर खुशियाँ लाती हैं, और अपने प्रेम और धैर्य से परिवार को जोड़ कर रखती हैं। मुझे भी मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ याद आ रही है कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। सच में ये पंक्तियाँ नेहा जैसे मन के भीतर उम्मीद का दीप जला देती है।
1: बिल्कुल कोमल, और शायद यही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का सबसे सुंदर संदेश भी है।
0: बिल्कुल,
1: कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरे क्यों ना आए, अगर मन में उम्मीद, ज्ञान और सकारात्मकता का उजाला बना रहे तो रास्ते अपने आप रोशन होने लगते हैं। तो आइए सखियों, अपने भीतर ऐसा दीप जलाएं जिनकी रोशनी सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित ना रहे बल्कि दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कान बनकर चमके।
0: क्योंकि असली प्रकाश बहनों वही है जो खुद भी जगमगाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाए। और इसी खूबसूरत उजाले, उम्मीद और सकारात्मकता के साथ अब वक्त हो गया एक मधुर गीत सुनने का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: सखियों, जीवन में जब भी संघर्ष की आंधियां उठती हैं, तब सबसे पहले शांति का दीप जलाने का साहस अक्सर हम महिलाएं ही करती हैं। अपने धैर्य, संवेदना और समझदारी से वह टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ती हैं, संवाद के रास्ते खोलती हैं और समाज में विश्वास की नई रोशनी जगाती है। इन्हीं सुंदर विचारों को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है श्रीमती रेखा गुप्ता जी की विशेष वार्ता, संघर्ष से संवाद तक, शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी। प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास जी की और संयोजन है श्री अमित सिंह का।
2: नारी से ही प्रेम खिले, नारी से संसार, उसके मन की शीतलता से मिटे हर संहार। शांति का संदेश लिए बढ़ती जाए नारी, उसके कदमों से महके मानवता की क्यारी। आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सहज, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनाएं। जब मन शांत होता है तो विचार भी सकारात्मक होते हैं और हमारा व्यवहार समाज में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है। हम सभी अपने जीवन में धैर्य, करुणा, सहनशीलता और शांति को अपनाने का संकल्प लें ताकि हमारा जीवन सहज बने और समाज भी अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बन सके। वर्तमान समय में जब विश्व अनेक प्रकार के संघर्षों, असहिष्णुता, हिंसा और सामाजिक विभाजन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब महिलाओं की शांति स्थापना में सक्रिय भागीदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायी संदेश बनकर उभरती है। यह केवल आज के समाज के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भविष्य के मानव समाज की दिशा और सोच को भी प्रभावित करता है। सबसे पहला संदेश यह मिलेगा कि शांति किसी एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। जब महिलाएं परिवार, समाज, शिक्षा, राजनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में शांति और संवाद को बढ़ावा देती है, तब नई पीढ़ी सीखती है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान हिंसा नहीं बल्कि बातचीत, समझदारी और सहानुभूति से किया जाना चाहिए। आज जब दुनिया अनेक प्रकार के संघर्षों, मतभेदों और असहिष्णुता की चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण सहजीवन का अर्थ केवल हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ, भाषाएं और विचारधाराएं रखने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्वक जीवन जी सके। यह हमें सिखाता है कि विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और संवाद ही किसी भी मतभेद का सर्वोत्तम समाधान है। आज के समय में समाज बढ़ती कटुता, असहिष्णुता और विभाजन की प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए सहानुभूति, सहयोग और मानवता की आवश्यकता है। परिवार, विद्यालय, समाज और मीडिया सभी की जिम्मेदारी है कि वे नई पीढ़ी में शांति और सह अस्तित्व के संस्कार विकसित करें। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और भिन्नताओं को स्वीकार करके भी वास्तविक शांति संभव हो पाती है। भारत की संस्कृति सदैव वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, का संदेश देती रही है। यही भावना अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सहजीवन दिवस की मूल आत्मा भी है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और अनेक संतों ने अहिंसा, प्रेम और करुणा के माध्यम से मानवता को शांति का मार्ग दिखाया। हमें अपने व्यवहार में सहिष्णुता, धैर्य और संवाद को स्थान देना चाहिए।

छोटी छोटी सकारात्मक पहल जैसे दूसरों का सम्मान करना, विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाना और जरूरतमंदों की सहायता करना समाज में बड़े परिवर्तन ला सकती है। हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि मानना चाहिए तथा शांति, सद्भाव और भाईचारे से युक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यदि समाज को स्थायी शांति की ओर बढ़ाना है तो महिलाओं की सहभागिता केवल आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। आज विश्व भर में संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता की अनेक परिस्थितियां सामने आती है। ऐसे समय में महिलाएं केवल पीड़ित या दर्शक नहीं रहती बल्कि शांति की वाहक, संवाद की सूत्रधार और समाज को जोड़ने वाली शक्ति बनकर उभरती है। संघर्ष से संवाद तक की यह यात्रा महिलाओं की संवेदनशीलता, धैर्य और नेतृत्व क्षमता का जीवंत उदाहरण है। महिलाएं सदियों से परिवार और समाज में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती रही है। जब किसी क्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न होता है तब सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है, लेकिन यही महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में भी आशा, सहानुभूति और संवाद का मार्ग प्रशस्त करती है। वे समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने, हिंसा से प्रभावित लोगों को मानसिक संबल देने तथा शांति के लिए जन जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये स्वीकार किया जा चुका है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना शांति स्थापना अधूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी महिला शांति और सुरक्षा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि संघर्ष, समाधान, नीति निर्माण और शांति वार्ताओं में महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो शांति समझौते अधिक स्थायी और प्रभावी सिद्ध होते हैं। भारत में भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ महिलाओं ने सामाजिक तनाव को कम करने और संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांवों की पंचायतों से लेकर सामाजिक संगठनों तक महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से शांति का वातावरण तैयार कर रही हैं। वे ये सिद्ध कर रही है कि संवाद ही किसी भी संघर्ष का सबसे सशक्त समाधान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व के रूप में देखा जाए। उन्हें शिक्षा, अवसर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाया जाए। आज की महिलाओं को सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाए। उन्हें शिक्षा, अवसर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाया जाए। जब महिलाओं की आवाज़ को सम्मान मिलेगा तब समाज में संवेदनशीलता, सहिष्णुता और स्थायी शांति का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं बल्कि विश्वास, समानता और संवाद की उपस्थिति है, और इस संवाद को जीवंत बनाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघर्ष से संवाद तक की यात्रा हमें सिखाती है कि यदि महिलाओं को साथ लेकर चला जाए तो समाज अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी और मानवीय बन सकता है। महिलाओं की संवेदनशीलता और धैर्य समाज को जोड़ने की शक्ति रखते हैं। महिलाएं परिवार की पहली शिक्षिका होती है। वे बच्चों को बचपन से ही प्रेम, करुणा, सहयोग, सम्मान और सहिष्णुता के संस्कार देती है। यही मूल्य आगे चलकर एक शांतिपूर्ण समाज की नींव बनते हैं। यदि बच्चों को प्रारंभ से ही समानता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाए तो वे बड़े होकर अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनेंगे। इसके अतिरिक्त महिलाओं की भूमिका यह संदेश भी देती है कि नेतृत्व केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं बल्कि सेवा, समन्वय और संवाद की क्षमता भी है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेती है तब समाज में संतुलन और मानवीय दृष्टिकोण बढ़ता है। इससे भविष्य की पीढ़ियां यह सीखेंगी कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं द्वारा शांति और सह अस्तित्व के लिए किए गए प्रयास नई पीढ़ी को विविधता में एकता का महत्व भी सिखाते हैं। धर्म, भाषा, संस्कार और विचारों में भिन्नता होने के बावजूद यदि लोग एक दूसरे का सम्मान करें तो समाज अधिक मजबूत और शांतिपूर्ण बन सकता है। आज महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रिय रूप से शांति निर्माण में योगदान दे रही है। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएं राहत कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक पुनर्वास जैसे कार्यों में आगे रहती है। वे हिंसा से प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहारा भी प्रदान करती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी यह स्वीकार किया है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। जब महिलाएं शांति वार्ताओं और निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल होती है तब समाधान अधिक मानवीय, संतुलित और दीर्घकालिक बनते हैं। भारत में भी अनेक महिलाएं सामाजिक सौहार्द और

0: के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। आज भी गाँव की पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक अभियानों में महिलाएं समाज को एकजुट करने का कार्य कर रही है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि महिलाओं को निर्णय लेने के अवसर और समान भागीदारी दी जाए। जब महिलाओं की आवाज़ को सम्मान मिलेगा तब समाज अधिक शांतिपूर्ण, संवेदनशील और समावेशी बन सकेगा। कहा जा सकता है कि महिलाएं केवल शांति की समर्थक नहीं बल्कि शांति की सशक्त निर्माता है। उनकी भागीदारी से ही संवाद, सह अस्तित्व और मानवता की भावना मजबूत होती है, जो किसी भी समाज में स्थायी शांति की आधारशिला है। आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिलेगा कि शांति केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान, सहिष्णुता और संवाद से स्थापित होती है। यदि समाज में महिलाओं को समान अवसर और सम्मान दिया जाए तो वह प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना के माध्यम से एक बेहतर और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकती है। नई पीढ़ी ये सीखेगी कि संघर्ष का समाधान हिंसा नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी है। महिलाएं जिस धैर्य, संवेदनशीलता और समन्वय की शक्ति का परिचय देती हैं वह आने वाले समाज को अधिक मानवीय और संतुलित बनाएगी। इसके साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से राष्ट्र निर्माण और शांति स्थापना में सहभागी हों। आने वाली पीढ़ियाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाकर विविधताओं में एकता और सह अस्तित्व का महत्व समझेंगी। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि शांति की शुरुआत हमारे विचारों, व्यवहार और आपसी संबंधों से होगी और इसमें महिलाओं की भूमिका प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों की है। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल युग में रह रही है जहाँ सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे समय में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका यह संदेश देती है कि सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक का उपयोग नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता, संवाद और सद्भाव बढ़ाने के लिए होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि स्थायी शांति केवल कानूनों और समझौतों से नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, समानता, सम्मान और समाज से स्थापित होती है। और अगर इस मार्ग को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समाज महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और नेतृत्व प्रदान करेगा तो भविष्य की पीढ़ियां अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु और मानवीय विश्व का निर्माण कर सकेंगी।
1: तो सखियों, आपने अभी सुनी वार्ता श्रीमती रेखा गुप्ता की और अब आप ये बात समझ ही गई होंगी कि शांति केवल शब्दों से नहीं बल्कि संवेदनाओं, धैर्य और आपसी विश्वास से स्थापित होती है और इस राह में महिलाओं की भूमिका हमेशा प्रेरणादायी रही है। इसी सकारात्मक भावना के साथ अब समय है बढ़ने का एक ऐसे संदेश की ओर जो देशभक्ति, समर्पण और सम्मान की मधुर अनुभूति से भरा है। प्रस्तुत है भारतीय सेना के सम्मान में कैलाश खेर द्वारा दिया सुरमई संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: नेहा, जीवन की सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं बसती है तो वो परिवार के बीच ही बसती है ना। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियों और थकान के बाद जब घर का दरवाजा खुलता है ना और अपनेपन की मुस्कान सामने दिखाई देती है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन उस सुकून को बनाए रखने के लिए सिर्फ साथ रहना काफी नहीं होता, रिश्तों में समझ, धैर्य और प्रेम भी उतना ही जरूरी होता है।
3: बिल्कुल कोमल, हर घर में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। किसी की आदत जल्दी बोलने की होती है तो कोई मन की बात चुपचाप सह लेता है।
2: सही है।
3: कोई गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है तो कोई हर बात को प्यार से संभाल लेता है।
2: बिल्कुल।
3: इन्हीं अलग अलग रंगों से परिवार की तस्वीर बनती है। लेकिन जब रिश्तों के बीच सम्मान और अपनापन होता है ना तो घर सचमुच घर लगता है, वरना वही दीवारें वीरान लगने लगती हैं।
2: और नेहा, पता है परिवार की सबसे प्यारी बात क्या होती है? कि यहाँ छोटी छोटी बातें भी रिश्तों में मिठास घोल देती है। हाँ, कभी हल्की नोकझोंक भी हो जाती है, कभी किसी बात पर मन थोड़ा खिन भी हो जाता है, लेकिन जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ नाराजगी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है।
3: सही कहा। घर के हर रिश्ते खास होते हैं कोमल। उन रिश्तों में आत्मा बसती है। लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना वो कुछ अलग ही होता है।
2: बिल्कुल।
3: वो रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाने का ही नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का भी रिश्ता होता है। जब दोनों एक दूसरे की थकान, जिम्मेदारियों और भावनाओं को समझने लगते हैं तब घर का वातावरण अपने आप शांत और सुंदर बनने लगता है।
2: बिल्कुल।
3: कई बार सिर्फ एक प्यारा सा शब्द, एक मुस्कान या मैं हूं ना जैसा भरोसा भी मन की सारी उलझने दूर कर देता है।
2: बिल्कुल सही कहा नेहा। पर परिवार पति पत्नी तक ही तो सीमित नहीं होता ना।
3: बिल्कुल।
2: बहनों, घर में सास ससुर का आशीर्वाद, जेठ जेठानी का साथ और बच्चों की हंसी, ये भी घर की

0: नक में चार चांद लगा देते हैं। जब बड़े अपने अनुभव से घर को दिशा देते हैं और छोटे उनका सम्मान करते हैं, तब रिश्तों में एक अलग ही मिठास खुल जाती है। घर की शांति इस बात से नहीं बनती कि कभी कोई मतभेद हो ना हो, बल्कि इस बात से बनती है कि मतभेद के बाद भी मन भेद ना आने पाए।
1: बहुत सही बात कही कोमल तुमने। आजकल जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लिए समय निकालना भूलते जा रहे हैं। लेकिन सखियों, रिश्ते समय मांगते हैं, अपनापन मांगते हैं। कभी साथ बैठकर चाय पी लेना, कभी बच्चों की छोटी छोटी बातें सुन लेना, कभी बड़ों के पास कुछ देर बैठ जाना, यही पल बाद में जीवन की सबसे सुंदर यादें बनते हैं।
0: और सच कहें नया, घर की असली खूबसूरती महंगे सामानों में नहीं बल्कि वहाँ गूंजती हंसी में होती है। जहाँ एक दूसरे की बातों को महत्व दिया जाए, जहाँ गलती होने पर अहंकार नहीं अपनापन आ गया है, जहाँ थके हुए चेहरे को देख कर कोई पूछ ले सब ठीक है ना, वही परिवार में सच्ची शांति बसती है।
1: तो सखियों, अगर परिवार में प्रेम और आपसी समझ बनी रहे तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है, क्योंकि परिवार वही जगह है जहां हम बिना किसी दिखावे के अपने जैसे रह सकते हैं और जहां हमें हर हाल में अपनाने वाले लोग मिलते हैं।
0: इसीलिए रिश्तों को शब्दों से नहीं, भावनाओं से सींचिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए और अपनेपन की गर्माहट को हमेशा बनाए रखिए। इन्हीं सुंदर भावों के साथ एक और गीत सुनाते हैं आपको।

नहीं, आजकल अगर किसी से पूछ लिया जाए कभी कि सबसे जरूरी चीज आपके लिए क्या है, तो लोग क्या कहेंगे पता है? मोबाइल। और सच कहे तो सुबह आंख खुलने से लेकर

0: रात को सोने तक स्मार्टफोन हमारे साथ ही रहता है।
1: बिल्कुल कोमल, आराम से दिन शुरू होता है, ऑनलाइन पेमेंट, फोटो, बातें, वीडियो कॉल्स, पढ़ाई, खरीदारी, सब कुछ अब मोबाइल से ही होने लगा है ना।
0: बिल्कुल, और पहले छोटे छोटे कामों के लिए क्या है, लाइन में लगना पड़ता था, नया बिजली का बिल जमा करवाना है, बैंक का काम हो या किसी को पैसे भेजने हो, लेकिन अब क्या है, घर बैठे बैठे कई काम मिनटों में हो जाते हैं।
1: और सबसे अच्छी बात, दूर बैठे अपने लोग भी अब दूर नहीं लगते।
0: बिल्कुल,
1: वीडियो कॉल से चेहरे भी दिख जाते हैं और अपनापन भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा नया। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी स्मार्टफोन काफी मददगार साबित हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं बच्चे, नई जानकारियां मिलती है बच्चों को, और सीखने के लिए कई तरीके अब मोबाइल पर ही मिल जाते हैं।
1: और महिलाओं के लिए भी ये काफी उपयोगी साबित हुआ है। नई रेसिपी सीखनी हो, छोटा बिजनेस शुरू करना हो या कोई भी कला सीखनी हो, स्मार्टफोन ने रास्ते आसान कर दिए हैं, है ना।
0: बिल्कुल, लेकिन जितना उपयोग जरूरी है ना नेहा, उतनी ही सावधानी भी जरूरी हो जाती है। पहनो, जरूरत से ज्यादा मोबाइल समय भी खराब करता है, क्योंकि हम बैठे बैठे बस अगर एक वीडियो अपन ने देख लिया तो बस हम वो वीडियो देख
1: करते चले जाते हैं।

0: का मिनटों में हो जाते हैं।
1: और सबसे अच्छी बात, दूर बैठे अपने लोग भी अब दूर नहीं लगते।
0: बिल्कुल,
1: वीडियो कॉल से चेहरे भी दिख जाते हैं और अपनापन भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा नेहा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी स्मार्टफोन काफी मददगार साबित हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं बच्चे, नई जानकारियां मिलती है बच्चों को और सीखने के लिए कई तरीके अब मोबाइल पर ही मिल जाते हैं।
1: और महिलाओं के लिए भी ये काफी उपयोगी साबित हुआ है। नई रेसिपी सीखनी हो, छोटा बिजनेस शुरू करना हो या कोई भी कला सीखनी हो, स्मार्टफोन ने रास्ते आसान कर दिए हैं, है ना?
0: बिल्कुल, लेकिन जितना उपयोग जरूरी है ना नेहा, उतनी ही सावधानी भी जरूरी हो जाती है। बहनों, जरूरत से ज्यादा मोबाइल समय भी खराब करता है, क्योंकि हम बैठे बैठे बस अगर एक वीडियो अपन ने देख लिया तो बस हम वो वीडियो देख
1: करते चले जाते।
0: बिल्कुल, और सेहत पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए जरूरी है स्मार्टफोन का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए ताकि तकनीक हमारी मदद करे, हम पर हावी ना हो जाए।
1: बिल्कुल, आज तकनीक ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन असली समझदारी उसी में है कि हम तकनीक का उपयोग करें, उसे अपनी आदत ना बनाएं।
0: बिल्कुल, क्योंकि मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया तो मिल सकती है, लेकिन अपने लोगों का साथ, अपनी मुस्कान, उनकी मुस्कान और अपनापन सिर्फ रिश्तों में ही मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा समय मोबाइल से हटकर भी अपने परिवार, बच्चों और खुद के लिए निकालें।
1: तभी स्मार्टफोन सच में हमारे जीवन को आसान बनाएगा, न कि हमसे हमारा समय छीन लेगा। फिलहाल अब समय हो चला है एक सुरमई गुस्ताखी करने का, तो माफ कीजिएगा क्योंकि अब आंखों की गुस्ताखियां होने वाली हैं।

0: सखियों, आज वट सावित्री का पावन अवसर है और हम सभी महिलाएं सज धज कर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। और हम आपके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन हमेशा बना रहे।
1: हर रिश्ता वट वृक्ष की तरह मजबूत और अटल रहे। घर आंगन खुशियां, सौभाग्य और मुस्कुराहटों से भरा रहे।
0: बिल्कुल, माता सावित्री का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और जीवन का हर दिन सुख, शांति और नई उम्मीद लेकर आए।
1: इसी के साथ आपको हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं वट सावित्री व्रत की। और अब लेते हैं आपसे इजाजत। मैं नेहा गोस्वामी,
0: मैं कोमल पुरोहित,
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000

0: 1000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
7: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
9: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है।

0: मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है हर्षद जयपुरी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

हाथ में लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम

0: लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: तुम जो

कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीत दिया था मदन मोहन ने। गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म थी हंसते जख्म। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए हयाम के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है शाहिर लुधियानवी ने, गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कभी कभी।

ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लिबास का ये गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत आरडी बर्मन का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म मेरे हम सफर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। CBSE ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़दुद्दीन और गो स्के

0: सौम्या, जरा सच सच बताना, अगर किताबें अचानक बोलने लगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे?
1: शायद यही कहेंगी, प्रिय युवाओं, हमें सिर्फ अलमारी सजाने के लिए मत रखो, कभी खोल भी लिया करो।
0: वाह, और कुछ किताबें तो शायद शिकायत भी करें, रील्स में घंटों गुजार देते हो, हमें 5 मिनट भी नहीं देते।
1: लेकिन सोचो वसुंधरा, अगर युवा और साहित्य की दोस्ती सच में गहरी हो जाए तो शायद दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल जाए।
0: बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त वसुंधरा आचार्य।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सुनने में भले थोड़ा गंभीर लगे, लेकिन असल में युवाओं की जिंदगी को बहुत रंगीन बना सकता है, साहित्य और युवा।
0: बिल्कुल। सौम्या, एक सवाल, क्या आज के युवा साहित्य से दूर हो रहे हैं?
1: देखो वसुंधरा, थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर आया है। पहले लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, अब लोग छोटी कहानियाँ, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और कविताएं मोबाइल पर पढ़ते और सुनते हैं।
0: यानी साहित्य कहीं गया नहीं, बस उसका पहनावा बदल गया है।
1: बिल्कुल। जैसे पहले खत लिखे जाते थे, अब कैप्शन और स्टेटस में भावनाएं लिखी जाती है। फर्क सिर्फ माध्यम का है, एहसास आज भी वही है।
0: और सच कहूँ दोस्तों, तो साहित्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जब कोई युवा अपनी डायरी में अपने दिल की बात लिखता है तो वो भी साहित्य ही है।
1: बिल्कुल सही कहा। साहित्य हमें सोचने की ताकत देता है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो सिर्फ किरदार नहीं समझते, बल्कि इंसानों की भावनाओं को भी समझते हैं।
0: और शायद इसी वजह से साहित्य इंसान को थोड़ा संवेदनशील भी बना देता है।
1: एक अच्छी कविता कभी कभी वो कह देती है जो हम खुद शब्दों में नहीं कह पाते।
0: वैसे कुछ युवाओं का साहित्य से रिश्ता सिर्फ परीक्षा के समय याद आता है, हे भगवान, ये कविता किसने लिख दी।
1: और फिर गूगल बाबा की शरण में चले जाते हैं।
0: लेकिन सच में साहित्य सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये हमारी सोच को बड़ा बनाता है।
1: और युवा तो वैसे भी बदलाव की पहचान होते हैं। अगर युवा साहित्य से जुड़ेंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव और तेजी से आएगा।
0: अच्छा सौम्य, जरा हमारे दोस्तों के लिए एक छोटा सा क्विज हो जाए।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं। तो श्रोताओं बताइए, गोदान उपन्यास किस महान लेखक ने लिखा था?
0: सोचो। चलो अभी के लिए तो मैं ही बता देती हूँ। तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने आम इंसान की जिंदगी को इतने सरल और सच्चे ढंग से लिखा है।
1: और एक मजेदार तथ्य और सुनिए, कई बड़े लेखक अपनी कहानियों के लिए आम लोगों की छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लेते थे।
0: यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं है।
1: बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है।
0: लेकिन एक सवाल और, युवा साहित्य क्यों पढ़े?
1: क्योंकि वसुंधरा, साहित्य हमें सिर्फ शब्द नहीं देता, सोचने का तरीका भी देता है। जब हम किसी किरदार के संघर्ष को पढ़ते हैं तो खुद की मुश्किलें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और कभी कभी कोई एक लाइन दिल को इतना छू जाती है कि लगता है, अरे ये तो मेरे मन की बात थी।
1: सही कहा। और आजकल तो ऑडियो बुक्स भी है, अगर पढ़ने का समय नहीं तो सुनिए, साहित्य अब हर रूप में मौजूद है।
0: यानी अब बहाना नहीं चलेगा कि समय नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, 5 मिनट की एक कविता भी दिन बदल सकती है।
0: अच्छा, तो अब एक मजेदार सवाल, अगर कोई किताब आपकी दोस्त बन जाए तो वो कैसी होगी?
1: मेरी दोस्त जैसी जो मुझे जज ना करे, लेकिन सही रास्ता जरूर दिखाए।
0: वाह।

0: मेरी ऐसी होगी जो उदास दिनों में कहे, चलो नई शुरुआत करते हैं।
1: दोस्तों, अगर आपने आज तक साहित्य को सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा समझा है तो एक बार उसे दोस्त बनाकर देखिए,
0: क्योंकि साहित्य सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, अनुभवों की दुनिया है।
1: और युवा सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तो क्यों ना युवा और साहित्य की ये दोस्ती और मजबूत की जाए।
1: एक किताब, एक कविता या एक कहानी से शुरुआत कीजिए।

0: की बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों, अब रोज की तरह समय हो गया है आपसे दो सवाल पूछने का, जिनके जवाब आपको सोच के रखने हैं, क्योंकि हम तो कार्यक्रम के अंत में ही आपको उनके जवाब बताएंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल है, भारत के किस राज्य ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्कूल का शुभारंभ किया गया है? मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, भारत के किस राज्य में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्कूल का शुभारंभ किया गया है?
4: और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दोस्तों, आपको इन सवालों के उत्तर सोच के रखने होंगे, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम फिर हाजिर होंगे इन सवालों के उत्तर के साथ। वैसे सौम्या, ज़रा कल्पना करो, अगर बादलों ने कभी कोई घर चुना हो, पहाड़ों ने कोई गीत गाया हो और फूलों ने किसी राज्य की पहचान बनाई हो, तो वो जगह कैसी होगी?
3: वाह, सुनकर तो लगता है जैसे किसी कहानी की दुनिया हो। लेकिन रुको, कहीं तुम भारत के उस छोटे से खूबसूरत राज्य की बात तो नहीं कर रही जहाँ प्रकृति खुद चित्रकार बन जाती है?
4: बिल्कुल सही पहचाना। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारत के उस अनमोल रत्न की, जहाँ हर मोड़ पर बादल मुस्कुराते हैं, हर घाटी में शांति बसती है, यानी सिक्किम की।
3: वसुंधरा, सबसे पहले ये बताओ कि आखिर सिक्किम दिवस मनाया क्यों जाता है?
4: काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। हर साल 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था।
3: यानी यह दिन सिक्किम के भारत के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने की याद दिलाता है।
4: बिल्कुल, ये दिन सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है दोस्तों, बल्कि एक नई पहचान और नए सफर की शुरुआत का प्रतीक है।
3: दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा राज्य लेकिन खूबसूरती और संस्कृति के मामले में कितना समृद्ध।
4: सही कहा, सिक्किम का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी।
3: जी हाँ, कंचनजंगा पर्वत, जो सिक्किम की शान माना जाता है।
4: और क्या तुम जानती हो सौम्या, सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य भी माना जाता है।
3: वाह, यानी वहाँ खेती में रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल कर प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाता है। सच में प्रकृति के साथ तालमेल का सुंदर उदाहरण है सिक्किम।
4: और यही बात युवाओं को भी प्रेरित करती है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
3: बिल्कुल, वैसे सिक्किम सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है।
4: और वहाँ अलग अलग समुदाय यानी लेपचा, भूटिया और नेपाली मिलकर एक सुंदर सांस्कृतिक विविधता बनाते हैं।
3: और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है, अनेकता में एकता।
4: वैसे अगर कोई पहाड़ों का शौकीन हो तो सिक्किम का नाम सुनते ही उसके मन में बैग पैक करने का ख्याल आ जाता होगा।
3: बिल्कुल, और सोशल मीडिया वाले लोग तो पहले से ही फोटो के लिए जगह सोचने लगते होंगे।
4: लेकिन सच कहें, सिक्किम सिर्फ घूमने की जगह नहीं, सीखने की जगह भी है।
3: सीखने की जगह, वो कैसे?
4: देखो सौम्य, सिक्किम हमें सिखाता है कि छोटा होना कमजोरी नहीं होती। छोटा राज्य होकर भी उसने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और पर्यटन में बहुत बड़ी पहचान बनाई है।
3: यह बात युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि चाहे शुरुआत छोटी हो, सोच बड़ी होनी चाहिए।
4: वैसे रिचुअल नहीं टूटना चाहिए। तो दोस्तों, अब समय है एक छोटे से रोचक प्रश्न का।
3: तो बताइए, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था?
4: दोस्तों की तरफ से शायद मुझे जवाब दे देना चाहिए। अगर आपने कहा 22वां राज्य, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है।
3: और एक मज़ेदार तथ्य, सिक्किम में कई खूबसूरत बौद्ध मठ यानी मोनेस्ट्रीज भी हैं, जो वहाँ की शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माने जाते हैं।
4: जैसे कि प्रसिद्ध रूमटेक मठ, जो पर्यटकों को श्रद्धालुओं दोनों के आकर्षण का केंद्र है।
3: और राजधानी गैंगटॉक, जहाँ

0: आधुनिकता और प्रकृति दोनों का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: सच में दोस्तों, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो हमें सादगी, प्रकृति से प्रेम और सांस्कृतिक सम्मान की सीख देता है।
0: दोस्तों, सिक्किम दिवस सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का अवसर भी है,
1: क्योंकि जब देश का कोई एक हिस्सा आगे बढ़ता है तो पूरा भारत आगे बढ़ता है।
0: तो युवाओं, क्यों ना आज हम सिक्किम दिवस पर एक संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करेंगे, विविधता का सम्मान करेंगे और अपने देश के हर राज्य की संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे।
1: क्योंकि भारत सिर्फ नक्शे का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि कहानियों, संस्कृतियों और सपनों का संगम है।
0: और सिक्किम उसी संगम का एक खूबसूरत, शांत और प्रेरणादायक अध्याय है।
2: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान

0: को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: सौम्या, तुम्हें ध्यान हो तो आज शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी तो मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, इसका उद्देश्य लोगों के बीच शांति, भाईचारा, प्रेम और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है।
0: लेकिन ये शांतिपूर्वक सहजीवन का अर्थ क्या होता है?
1: इसका अर्थ है सभी लोग बिना भेदभाव के मिलजुल कर प्रेम और सम्मान के साथ रहें, चाहे धर्म, भाषा, जाति या संस्कृति अलग हो, फिर भी सभी के साथ समान व्यवहार करना ही शांतिपूर्वक सहजीवन कहलाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। आज के समय में समाज में बढ़ते विवादों को देखकर इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है दोस्तों।
1: बिल्कुल, क्योंकि शांति एक सुखी और मजबूत समाज की पहचान होती है। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी समाज में एकता बनी रहती है।
0: दोस्तों, हमारे देश भारत की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति

0: व्यक्ति के लोग मिलजुल कर रहते हैं।
1: सही कहा, हमें हमेशा दूसरों की बातों को समझने और सहयोग की भावना रखने की कोशिश करनी चाहिए।
0: वैसे युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है?
1: वसुंधरा, युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा सोशल मीडिया और अपने व्यवहार के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश फैला सकते हैं। हमें झगड़े और भेदभाव से दूर रहकर प्रेम, सहयोग और सद्भावना का संदेश देना चाहिए।
0: विद्यालयों और महाविद्यालयों में, यानी कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी भाईचारे और एकता में जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, नाटक, भाषण, समूह चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शांति और सहजीवन का महत्व समझाया जा सकता है।
0: और अगर हर व्यक्ति दूसरे का सम्मान करना सीख जाए तो समाज में हिंसा और तनाव कम हो सकता है।
1: सही कहा, शांति केवल युद्ध ना होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने का नाम भी है।
0: तो दोस्तों, शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें ये संदेश देता है कि मिलजुल कर रहना ही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है।
1: आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि अपने परिवार, विद्यालय और समाज में प्रेम, सम्मान और शांति का वातावरण बनाए रखेंगे।
0: तो बस शांति और सद्भाव अपनाएं, मिलजुल कर सुंदर समाज बनाएं।

0: रूबरू हो जाए हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: वसुंधरा, क्या तुम जानती हो, हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रकाश और प्रकाश विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूक करना है।
1: सौम्या, क्या तुम बता सकती हो कि इस दिवस की शुरुआत क्यों की गई थी?
0: बिल्कुल, इस दिवस की शुरुआत विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और मानव जीवन में प्रकाश की भूमिका को समझने के लिए की गई थी। प्रकाश केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का महत्वपूर्ण आधार भी है।
1: बिल्कुल, आज के समय में बिजली, लेजर, मोबाइल, इंटरनेट और चिकित्सा के कई उपकरण प्रकाश तकनीक पर आधारित हैं।
0: हाँ, और यही कारण है कि प्रकाश विज्ञान ने शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।
1: दोस्तों, अगर हम सोचें कि प्रकाश ना होता तो हमारा जीवन कितना कठिन होता। सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा देती है और प्रकृति को संतुलित बनाए रखती है।
0: सही कहा, पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है।
1: दोस्तों, ये दिवस युवाओं को विज्ञान और नवाचार की ओर प्रेरित करने का भी संदेश देता है।
0: बिल्कुल, आज का युवा यदि विज्ञान और तकनीक में रुचि ले तो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी विज्ञान प्रदर्शनी, जागरूकता रैली और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है।
0: साथ ही दोस्तों, हमें ऊर्जा की बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता ना होने पर बिजली बंद करना और LED बल्बों का उपयोग करना ऊर्जा संरक्षण में मदद कर सकता है।
1: सही कहा, क्योंकि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है।
0: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश जीवन को नई दिशा देता है।
1: तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि विज्ञान, शिक्षा और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, उज्ज्वल भविष्य बनाएं।

0: दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और भविष्य से जुड़ा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र।
1: बिल्कुल सही कहा। सौम्य, सबसे पहले ये बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है?
0: पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति का वह तंत्र है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी और मनुष्य सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं।
1: यानी अगर एनवायरनमेंट का कोई एक हिस्सा प्रभावित होता है तो उसका असर बाकी सभी पर पड़ता है।
0: बिल्कुल। उदाहरण के लिए, यदि पेड़ों की कटाई बढ़ती है तो ऑक्सीजन कम होगी, वर्षा प्रभावित होगी और तापमान भी बढ़ेगा। इसका असर मनुष्य, पशु, पक्षियों और खेती सभी पर पड़ेगा।
1: दोस्तों, आजकल हम लगातार सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बढ़ रहे हैं, क्या इसका संबंध इकोसिस्टम से है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे अधिक प्रदूषण फैलाना, नदियों को गंदा करना, जंगल काटना, तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है। यही असंतुलन जलवायु परिवर्तन का कारण भी बनता है।
1: और इसका प्रभाव हम अपने आसपास भी देख रहे हैं दोस्तों, कभी अत्यधिक गर्मी, कभी बाढ़ तो कभी सूखा।
0: सही कहा वसुंधरा। पहले मौसम संतुलित रहता था, लेकिन अब प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
1: तो सौम्या, ऐसे में युवाओं की क्या जिम्मेदारी बनती है?
0: हम युवाओं की भूमिका इस सबसे अहम है, क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य है। हमें केवल बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि छोटे छोटे कदम भी उठाने चाहिए।
1: छोटे छोटे कदम जैसे कौन कौन से कदम?
0: जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग

0: करना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
1: ये तो काफ़ी बेहतरीन सुझाव है। हमारे विद्यालय और हमारे कॉलेजेस में भी पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल, सभी युवा मिलकर एक छात्र एक पौधा जैसी मुहिम चला सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
1: और मुझे तो लगता है कि यदि हर युवा यानी कि हर यूथ ये संकल्प ले कि वो प्रकृति की रक्षा करेंगे तो देश में बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
0: सही कहा, प्रकृति हमें स्वच्छ हवा, पानी और जीवन देती है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
1: दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के बिना स्वस्थ जीवन संभव नहीं है।
0: आइए आज इस युवा कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी यह संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण अपना योगदान अवश्य देंगे। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, अब हम लेकर आए हैं युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा वर्ष 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो देश सेवा का साथ एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में है।
1: पदों की संख्या इस भर्ती अभियान के तहत लगभग 9,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी आवेदन तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 तक की है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें।
0: उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अधिकांश पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी CRPF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं RECT.CRPF.GOV.IN।
1: दोस्तों, कार्यक्रम से पहले हमने आपसे दो सवाल पूछे थे। अब तक तो आपने उनके जवाब सोच ही लिए होंगे, और अगर नहीं भी सोचे तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। हमारा पहला सवाल था, भारत के किस राज्य में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल का शुभारंभ किया गया है? उसका सही जवाब है केरला।
0: और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल था, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है?

0: इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही उत्तर सोचे होंगे। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का।
1: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारियां और साथ ही सुनेंगे राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़। आज का ही कार्यक्रम पेश करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और कुंजीलाल स्वामी। रात्रि 7:45 आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात 8 बजे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। समय याद रखिएगा रात 8 बजे से। वाचक स्वर होंगे श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजक होंगे श्री अमित सिंह। समय याद रखिएगा आज रात 8 बजे से।

लोक संगीत हम आपको सुनाएंगे रात्रि 8:30 बजे से, फिल्म संगीत रात 9:15 बजे से।

रात 9:30 बजे दिल्ली से रिले होगा कार्यक्रम चित्र भारती और रात्रि 10 बजे दिल्ली से ही रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर होंगे श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजक होंगे श्री अमित सिंह। समय याद रखिएगा, आज रात 8 बजे से।

0: में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे।

0: in some up tour.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मिलेंगे मिलेंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुखविंदर, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम गर्व।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

ये आवाज़ें थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की। फिल्म का नाम था तेरी बाहों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अलका याग्निक, कुमार शानू और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम राजा रानी।

अलका याग्निक कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंश है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा

0: शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
1: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नेदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय आधारभूत कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
3: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज़्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ

0: कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। CBI ने आज नीट UG 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में, अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े

0: बीते दिनों भीलवाड़ा आए, उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों की ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना रे लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करया जावेला। और प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू फेक्यो। 14 जून तक चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावन में काम ली रही जी सामग्री और मौजूद सुविधा रा बारा में 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला में ई काम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणे री बोटनी री शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी ही। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। सीबीआई रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वाघमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवार ने वारा पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला माए हाल ताई दिल्ली

0: जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगरों 9 आरोपितों ने पकड़ी चिया है। काल गिरफ्तार करी चिया 2 आरोपितों ने पुणे री अदालत सामी पेश करी चिया, जठौवा ने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माए सीबीआई नैरी नैरी ठोड़ाऊ कई आपत्तिजोग कागजात, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माए देश री हिफाजत रा हल्का माए खुद रे पाण उबो वेवणोई देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माए रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माए अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावन सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हल्का माए काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावन री बजाय देश माई बनार खुद रे पाण उबो वेवन ओड़ी तेजी बढ़ रियो है।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल वे वनरे मौके 18 मई ने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 2.5 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया जाऊ इनरी देश माए खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्षरा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नोहब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कानियों करया जा रहे तकनीकी नवाचार री जानकारी लीनी। वे रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हल्का माए स्टार्टअप्स री कोशिशां देखी और वानी सराहना कीनी। मुख्य सचिव एआई और नूवी तकनीक माथे आधारित भणाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलाऊं जोड़बा माथे जोर दीनो।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आई स्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामो करण सारू भरोसेमंद, साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माए मिलर काम कर रहा है। वे 5 देशों रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माए भारतीय समुदाय रा लोगों ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी वेवन री सूरत माए दुनिया रा विकास माथे असर पड़बा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी माए भारत मौका री धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक और इंसानी मूल्यों रा आधार आगे बढ़ रियो है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा।

0: की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रदेश में आए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारो 500 स्कूलों में आए नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो के ई काम में थे 51 करोड़ रुपये बत्ती रकम खर्च करी चावेला। मंत्री बतायो के बजट में करी जा ऐलान रे मुजब स्कूलों में बुनियादी ढांचा रा विकास सारो 2000 करोड़ रुपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनायो चावेला। श्री पटेल बतायो के करीब 400 स्कूलों ने सीएम राइज स्कूलों रा तौर विकसित करी चावेला और 1000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली चावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा

0: राइज स्कूलां रा तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूलां माए एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुबिता सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माए काम करण वालो ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वह बतायो कि ई ऐप रे मार्फत सैलानियां ने सुरक्षित गेलां री जानकारी सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माए मदद मिल सकेला।
1: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज़्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग रे शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन कीनो। 20 जून तक चलने वाला ई कैंप माए मोटी तादाद माए बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर माए बच्चा ने रंगमंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
2: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी चीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: अरब मौसम, प्रदेश का घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलौदी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा रे मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुनी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण री संभावना है। इन बीच 18 मई आतुणी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बाजण री संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस रे मौके प्रदेश में आई कई कार्यक्रम रखी जा। झुंझुनू माए ANM ट्रेनिंग सेंटर री टावरियां री ओर जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरां री रोकथाम रे बारे माए जानकारी दी री जी। जैसलमेर माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियां री ओर मच्छर मारण सारू जतन करी जिया और जनता ने जानकारी दी री जी। करौली माए जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवई हल्का माए डेमो, पोस्टर, पंपलेट और सोशल मीडिया रे जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य माए आज मकाना री लिस्ट बनावण रो काम शुरू हो। नीट UG 2026 पेपर लीक मामला माए CBI आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य माए व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूला माए नुआ कोर्स शुरू करिया जावेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का माए जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: खरखर गणे कोड सुंग ग्रामीण जगत कार्यक्रम री उडीक में बैठा सगला किसान भाई बहना ने आपरे भाई तोला राम आर
1: भरत कुमार जाजड़ा घणान घणा रामी राम
0: राम राम। भरत भाई देखो आज रो दिन है, बिया तो तावड़े रो दिन है, पर आज रो दिन खास और है। आज शनिवार है
1: और गुंजे गांव गुवाहाटी भाई लोगों ने अडी क्रिया करे आज रे दिन।
0: बिल्कुल देखो आपरी पसंदरा गीतड़ला सुन सारू भाई लोग आप जिका है आपने मेल करे कई कागदिया लिखे और कई भाई ऐसा भी हुआ जिका कार्यक्रम ने लगातार चालते भगत सुने और वे सीधा आपने मेल करे है कि भाई मारे ओ पसंद रो गीतड़लो सुनाई दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपरी पसंद आपरी फरमाई जगह है बिना सुनाऊन वास्ते ही मैं लोग बैठा ताकि आपरी जकी अडीक है बिने मैं दूर कर सका। और इर अलावा मैं वो भी ध्यान रखा कि आप जो को कागज उड़ो है आप मेल उड़ो है बिन ज़्यादा से ज़्यादा बाँचने की कोशिश करा।
0: बिल्कुल, और देखो अब बात है कि भाई गीतड़ला सुनाने की तो पहली भाई लोगन कोई गीतड़लो नजर करो।
1: बिल्कुल करा, लेकिन भी पहली आपारा मेल रो ठिकानो बता दा ताकि आज रे कार्यक्रम में भी अगर आप माने मेल भेजनो चाहो तो भेज सको हो। मेल रो ठिकानो है सा बहुत ही सरल बहुत ही सीधो है ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com। खातो बोलियो जन हो सके आपने समझ में नहीं आयो तो धीरे से एक बार फिर बोल दूँ, ग्रामीण GRAMIN जगत JAGAT और बीकानेर BIKANER ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com। ये ठिकानेर मत है आप माने मेल कर सको, हाथों हाथ आप अन्य मेल भेजो और अन्य माने मिल जैसी। आप कोई भी है तोड़ाराम भाई ने लिख सको, तोड़ाराम भाई अबारी ने संभाल लिया आप रो मेल जो को है बिने बाँच और आपने सुना सी।
0: बिल्कुल, तो देखो सुनावा भाई लोगा ने पहलड़ो गीतड़लो है खड़ी नीम रे नीचे चंपा मिथियार बीरे साथे आला रे गयड़ो है।
1: सुनाओ फिर।
2: खड़ी नीम के नीचे में तो खड़ी सुकाओ केश बालम भौसुरुस गिया तो गिया दूर परदेश।

0: तो देखो भरतभाई सुनियो, चंपा मिथी और सत्यारे गयड़ो खड़ी नीम रे नीचे।
1: और इस वास्ते कई जगह हमारे खाने मेल और कागज आउड़ है, कुंजीलाल भाई बने बाँचो थे। और देखो राम सिंह पूरा जिला गंगानगर एक आउड़ है मेल पहले थे इन बाँचो थे।
0: अशोक बब्बर, पवन, राजेश बब्बर, अजय, राहुल और मन्नू बब्बर, जय नारायण व्यास कॉलोन बीकानेर सु अशोक कुमार साई, श्रीमती संतोष साई, राजश्री आर गौरव साई, तेलंगाना निजामाबाद सु शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, शेख रहीम आर मुन्ना।
1: इसके अलावा वरन नगर कोल्हापुर महाराष्ट्र सु अमित नारायण और सांगली जिला सु अल्ताफ हुसैन और सैफुल्ला, गांव गमंडिया तहसील सूरतगढ़ सु जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढुकिया और कुंदनपुरा सु एक कागज उड़े है। देखो थारा हाथ रे मैंने मने दिख रही है इन्हें थे बाँचो।
0: भाई देखो जिला बाड़मेर राजस्थान सु जगदीश उमरा, मोहनलाल, नरेश कुमार, निम्बाराम और सगड़ा सुमरा परिवार। और सागे सागे देखो अभी कार्यक्रम में चाल दे भगत में ही आप आ रहे पुराना श्रोता है राम कुमार रिवाड़ जी बे लिखे हुए भी देखो वो खड़ी नीम के नीचे जी को है नी बिल्कुल इतो सागिड़ो गीतरलो सुनाया है। और इन्हें सागे सागे भी आ रहा चंद्रकला रिवाड़ जी है बे भी इन्हें सुननो चावरिया।
1: एक और आयो है अबार हाथों हाथी भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परियार और इर अलावा एक और है
0: संबलपुर कांकर सु फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव।
1: गांव नथना पंजाब सु हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ए भी सुन रहा है ऐसा। और इर अलावा मेल एक और आयो देखो कैथल हरियाणा सु
0: जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा।
1: हाँ तो ए तो सगड़ा फरमाइश रखी ही पहले गीतर वास है, अब सुना आगलो गीतर लो और पच बतावा फरमाइश ही करिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
5: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है, उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं, 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।
6: तो भाई देखो कि तो आज होगी त्रिलो सुनियो निर्मला पारिक रे गयोड़ो काली कलायन उमड़ी आर इन्हें सुनो चावरिया हनुमानगढ़ टाउन सू सुल्तान सिंह कपिल देव हिमानी जाखड़ आर नवलेसर नगर नरवेल महाराष्ट्र सू PS नवानकर निर्मला विशाल नवानकर आर रजक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान ए सगला सुनो चावरिया हनुमानगढ़ सुई।
7: और इर अलावा और भी मारखने आउड़ है, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा सू राजेश सेन सुरेखा सेन शुभम सेन रक्षे सेन बाबा रामदेव रोड गंगा शहर सू दिव्या सारस्वत मुरली मनोहर सारस्वत और लता सारस्वत दादा बाबू रोड गिरिडेह झारखंड सू मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नाज और बेबी चाहत।
6: हरियाणा सू साहिल कागरा मोनी कागरा प्रिंस बोट सीताराम कागरा और तन्वी बोट।
7: देखो खाली हरियाणा लिखियो, गांव नाम कौन लिखियो, गांव ना नाम भी लिख सको।
6: चक 15 PS जिला श्री गंगानगर सू सर्वजीत सिंह जोसन सर्वजीत कौर जोसन रोबिन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया सू अदृश्य पाल।
7: अच्छा सा, और अबे आपने निजर करा सा आग लोगी तड़लो।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: कर सांस।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: होत्या गो संदेशासून. या आर संदेशाहून पहिल्यापासून द्या ठोकर लाग जावेली आर इने गावरी आहा आ रागिनी आर बिर साथी आर इने सुनो चावता ई गीतर लेने जिका है बीकानेर शीतला गेट सू मोहम्मद सफी खींची मोहम्मद शरीफ खींची मोहम्मद सुजैन नूर फातमा मोहम्मद आजम मोहम्मद हनीफ एस एम सफी अकमल हुसैन बियानी अमजद अली खींची. अरे देखो ए अपारा नियमित श्रोता है और बिल्कुल अपने लगातार मेल भेजता रिया करे कागज लिखता रिया करे.
1: इसके अलावा एक और नियमित श्रोता है जका भी मेल भेजता रहे कागज भी भेजता रहे और सुनता रहे बराबर यह मुक्ता प्रसाद सू जुल्फिकार अली. और एक औड़ है गांव कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान सू विक्रम कड़वासरा सचिन कड़वासरा सतीश कड़वासरा और योगेश कड़वासरा.
0: रायपुर छत्तीसगढ़ सू विनोद वडलकर वीणा और विविधा वडलकर और भोपालगढ़ राजस्थान सू धर्मेंद्र छिपा कमल छिपा पूजा पढ़ियार मुजफ्फरपुर बिहार सू आर्यन राज रोहित राज हैप्पी और आनंद.
1: और अब सुना सा आगलो गीत लो.

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो देखो भाई लोग, सुनियो आपा ज्ञानेश्वरी शर्मा रे गयोड़ो थाने मनावन आई माता जीरो हरजस है,
3: और
2: इन्हें सुनो चावता है गांव सा खोद राजस्थान सु शंभु दयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदर लाल योगेश कुमार दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ग्राम मऊ पोस्ट भी मऊ है तहसील मांगरोल जिला 1200 स्वर्णलाल योगी श्रीमती गायत्री सोनिया उमा मयंक आर योगी परिवार
3: सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान सु रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गरवी गोविंदपुरा नीम का थाना सु दातार सिंह संगीता तुषार रिंकी शेखावत और सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा सु विनय मोहन मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी और अभी नजर करा सा आपने आग लोगी तड़ लो।

0: तोड़ाराम भाई, देखो अबार मेल एक आयो है, नियमित श्रोता है अपरा, आयो है एडवोकेट सुभाष खत्री कमला कॉलोनी बीकानेर सु। एक और मेल है जो अपने भेजा कर रहे कई बार कणी कणी,
1: रघुनाथपुरा जिला गंगानगर सु लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित आर खुशी गोस्वामी आर और है देखो अपरे गांव सस्वा जिला झुंझुनू सु नेकी राम रेवाड़ संतोष ममता कृष्णा पार्क दिल्ली सु सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवान और गांव गोविंदगढ़ माझीवाड़ा सु करणपुर जिके है बठूँ राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला गुड्डू जीनू मन्नू शिव करणपुरी इस्माइल टुटेजा और लक्ष्य जियाणी।
0: अब आगलो गीतड़ो है जो सुना अपन नाम बिरा पहली बांस दा आगलो गीतड़ो सुनने अडीक राख रहा है पायला किला जिला बाड़मेर सु मोहनलाल प्रजापत माणक दरिया कुमारी ऊषा बाला और यारा साथी नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान सु नरेंद्र सुथार मनोज सुथार शीशपाल सुथार पवन कुमार शंकर बिहारी शिव कुमार सोनू मिस्त्री और महेंद्र सुथार।
1: गांव खिंदासर तहसील कोलाइत जिला बीकानेर सु कानाराम चौहान गांव कलाना तहसील भादरा सु योगेश सचिन सतीश आर विक्रम गांव डुकिया तहसील सिंहदरी जिला बाड़मेर सु कृष्ण कुमार डाबी भूपत राधा देवी आर विक्रम।

0: तो भाई लोग आगलो गीतड़ जो को है बिने भी सुनने अड़ी घने जन लोग राख रहे है नाम है जका मैं बाँचू झज्जर हरियाणा सू बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया मयंक भाटिया और पानीपत सू नरेश मल्होत्रा गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश सू सत्येंद्र कुमार चांसोलिया
1: और दरियापुर बामली सू गजानंद येले नवदीप येले सेरी वडनेर महाराष्ट्र सू और बलदेव दामोदर अरुणा दामोदर चोटाला हरियाणा सू दारा पंडित बुलबुल जोशी दीवानसु जोशी गोना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश सू कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार नामदेव लखनलाल चोहना आकाश और रानी परी नामदेव
0: इसके अलावा मानेवाड़ा रोड नागपुर सू देवेंद्र भटकर सुशीला भटकर और बालो छत्तीसगढ़ सू देवशंकर तामुरिया अजय तुषार तामुरिया डोली बेबी पूजा और तामुरिया परिवार सगला रही वास्ते आप फरमाइश नियारी प्रस्तुत है
1: नींदड़ली घनी नखराली अभय सिंह गहलोत रे गयड़ो

0: अभय सिंह गहलोत री आवाज में गीतड़लो सुनियो सर, अब घड़ी सर कर रही है कि विदा लेने भगत आ गयो है। तो आप रे हेतड़ भाई भरत कुमार जाजड़ अर
1: तोड़ा राम ने दे रहो इजाजत घना घना मोकला मोकला
0: राम राम, राम, राम।

ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में अनूप जलोटा की स्वर में ये कबीर वाणी।

सुगम संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ही ये एक और कबीर बाणी।

अनूप जलोटा के स्वर में गाई इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजक श्री अमित सिंह।

0: दिनांक 10 मई को मातृ दिवस मनाया गया और सभी ने अपने अपने तरीके से माँ के बारे में चर्चा की, विचार रखे, प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं राजस्थान साहित्य चेतना मंच द्वारा मातृ दिवस पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया और डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास को सम्मानित भी किया गया। काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि कवि जुगल किशोर पुरोहित और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जगदीश दान बार्ट थे। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर शंकरलाल स्वामी ने की। संयोजन पूर्व प्रिंसिपल चिंतक और लेखक डॉक्टर नरसिंह बिन्नाणी ने किया। काव्य गोष्ठी की अधिक जानकारी देते हुए संयोजक डॉक्टर नरसिंह बिन्नाणी ने बताया,
1: बीकानेर में राजस्थान साहित्य चेतना मंच द्वारा मातृ दिवस का एक काव्य गोष्ठी के रूप में आयोजन किया गया था। यह नथुसरवास स्थान में दो चरणों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम चरण में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ
0: और अब सुनिए काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत कविताओं की एक झलक।
1: माँ की ममता ऐसी होती है, ये वह माता पिता का घर छोड़ती हैं, पराए घर को अपनाती हैं, तुमको पाने की चाह रखती हैं, नए माहौल में ढलती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, जब गर्भ धारण करती हैं अपनी खुशियों को त्यागती हैं, जब कहीं आने जाने का मन करता है तुम्हारी सुरक्षा खातिर मन मसोस रह जाती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, जब कुछ इच्छित खाने की इच्छा होती हैं तुम्हारे पोषण का सोचती हैं, जब तुम्हारे पोषण हेतु अच्छा होता है उसे अनिच्छा से भी खा लेती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, जब तुम संसार में आते हो तब खुशी खुशी प्रसव पीड़ा सह लेती हैं, अपनी जान पर खेल कर भी वह तुम्हें रंगीले संसार में लाती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, खुद सब दुख दर्द सह जाती हैं किंतु तुम्हें बचपन के सारे सुख देती हैं। माँ का आंचल मिल जाता है तो सारी दुनिया उसमें समा जाती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, खुद भूखी रह जाती हैं परंतु पेट तुम्हारा वह अवश्य भरती हैं, तुम्हारे कुछ लिए कुछ भी सह लेती हैं, धैर्य सहन शक्ति रखती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, सब कुछ सह लेती हैं फिर भी चुप वह रहती हैं, अपना निवाला देकर पेट वो तेरा भरती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, कोई काटा भी तुम्हें चुभता है माँ के मन में छुरी चली जाती हैं, जब दर्द तुम्हें कोई होता है माँ का दिल रोने लगता है। माँ की ममता ऐसी होती हैं, जब बेवजह कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो माँ चंडी रूप में आ जाती हैं, फिर चाहे सामने कोई आ जाता है तो वह एन भी निडरता से लड़ जाती हैं। माँ की ममता ऐसी होती हैं, जी हाँ सही में माँ की ममता ऐसी ही होती हैं।
0: श्रोताओं, इन दिनों गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक है, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को बार बार पानी पीना चाहिए। जरूरी कार्य ना हो तो घर से ना निकलें और धूप से बचाव रखें। इसी के साथ पशु और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। घरों के छत पर या सार्वजनिक स्थल पर पानी के बर्तन भरकर रखें ताकि बेजुबान पक्षियों और जानवरों की प्यास बुझ सके। श्रोताओं, इन दिनों बच्चों के छुट्टियां हो गई अथवा आजकल में होने वाली है, ऐसे में बच्चों के लिए एक विशेष बाल मेला लगाया गया स्थानीय अजीत फाउंडेशन में। दिनांक थी 10 मई। श्रोताओं, आपको भी उसी बाल मेले में लिए चलते हैं। बाल मेले की अधिक जानकारी देते हुए आप हैं संयोजक संजय श्रीमाली।
2: अजीत फाउंडेशन द्वारा जो बाल मेला आयोजित किया गया उसका हमारा मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में हम रचनात्मक सोच को पैदा करें और उनको एक सृजनात्मक मंच दें जहां वह आकर अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित कर सके। इसी को लेकर हमने बाल मेले का आयोजन किया। उसमें हमने 3-4 सत्र रखे। जो पहला सत्र था बाल मेले का उसमें हमने ओपन माइक सिस्टम रखा। उसमें हमने बच्चों को कहा कि जो उनको कविताएँ, कहानियाँ, जो आर्ट या गीत जो भी आता हो वह मंच पर बोले, तो उससे उनकी बोलने की जो विकास है, मंच पर बोलने का जो अभ्यास है वो एक मुखरित हुआ। फिर उसी के सामने

बीकानेर दर्पण के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सब सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक की पहली सीढ़ी पर है मातृ दिवस।

0: उसी के क्रम में हमने एक बुक क्लब का रखा, जिसमें हमने बच्चों के लिए बाल साहित्य की जो किताबें हैं, जो हमारे पास नवीन प्रकाशन है, नवी जो किताबें आई है, उनको हमने अलमारी के अंदर और एक पूरा स्टॉल के रूप में यहाँ पर लगाया, ताकि बच्चे उनको लेकर पढ़ सकें। तो वो भी एक सत्र रहा, उसमें लगभग घंटे भर तक बच्चों ने किताबें पढ़ी, नई नई कविताएँ सुनी, कहानियाँ सुनी। फिर हमने बच्चों को लिए एक रोचक या मनोरंजन के लिए ठाकुरदास जी स्वामी थे, उनको आमंत्रित किया। वह राष्ट्रीय लेवल के एक अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने पशु पक्षियों की आवाज़ें निकाली मुंह से, तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों को खूब मनोरंजन हुआ, उनका मन हल्का हुआ। तो इस टाइप की गतिविधियाँ हुई। फिर जब बच्चे यहाँ सब थे, तो हमने उनके साथ ही एक पेंटिंग का कार्यक्रम किया, चित्रकला का कार्यक्रम किया, जिसमें संस्था द्वारा ही उनको सब चीज़ें मुहैया करवाई गई। और उनका जो मुख्य थीम रखी कि उनके सपने, वह क्या बनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, उस सब चीज़ों को लेकर हमने उनसे चित्र बनवाए। और फिर अंत में हमने उन सबको लास्ट में हमने उनको एक फिल्म का प्रदर्शन किया, और उनके साथ एक प्रश्नोत्तरी है, मन संध्या है, वो बातचीत करना है, उनके जो साथ अभिभावक आए उनके साथ बातचीत करना, ये सब चीज़ें हमने उनके साथ की। तो ये बाल मेला
1: लगभग कितने बच्चे जो है बच्चों ने भाग लिया?
0: इस बाल मेले में लगभग 80 से 90 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हरिजन बस्ती और अल्पसंख्यक समुदाय शीतलागेट वहाँ से आए, और फिर कुछ आसपास के बच्चे भी यहाँ पर आए। बच्चों के साथ काफ़ी अभिभावक भी यहाँ मौजूद रहे।
1: बच्चों के साथ काम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपका अनुभव ये बता रहा है, आपकी बात ये बता रही है कि आपने बहुत ही सहज तरीके से बच्चों को अपने बीजी भी रखा और आनंददायी वातावरण में रखा। बच्चों के साथ काम करने का क्या अनुभव रहा आपका?
0: देखिए महेश जी, हम बच्चों को सीधा किताबों से नहीं जोड़ सकते, या जो कह सकते हैं कि सीधा हम उनको हमारे जो उद्देश्य उनके साथ नहीं जोड़ सकते। तो हमने इनके जो टूल्स था, उस दिन भी हमने बच्चों को यहाँ पर पजल्स और जो हमारे पास नए खिलौने हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करते हैं बच्चों का, वो खिलौने हमने उनके बीच में रखे। और उन्होंने कहा, मैंने हमने कहा कि उन खिलौने से आप खुलकर खेलें। जब वो खेल के द्वारा हमसे जुड़े, तो फिर हमने उनको दूसरी गतिविधियों के साथ जोड़े रखा। तो खेल के माध्यम से हम बच्चों को किसी भी गतिविधि के साथ, किसी भी शिक्षा के साथ, किसी भी और उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हैं।
1: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं इस बाल मेले में आई लोक कलाकार ठाकुरदास स्वामी द्वारा निकाली गई पशु पक्षियों और जानवरों की आवाजें। सुनिए एक झलक।
2: और मोर कैसे बोलता है? और इसी प्रकार से तोता, तोता पिंजरे में बंद है, वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कैसी आवाज बोलकर बाहर निकलना चाहता है। और इसी प्रकार से उल्लू कैसे बोलता है? और इसी प्रकार से दो हाथ बांध कर भी कुछ जानवर की आवाज़ सुनाता हूँ, वो है कमेड़ी। और लिए चलते हैं, जिस क्षेत्र के हम रहने वाले हैं उस क्षेत्र का एक पशु भी है, यानी कि ऊँट स्थान का जहाज ऊँट कैसे गर्जना करता है। और अगली बात में सुनिए आप, सुनाता हूँ बकरी कैसे बोलती है। बे, बे, बे,
1: बे। श्रोताओं, इन दिनों बीकानेर में सार्वजनिक पार्क या किसी खुले मैदान में प्रातः योग के अभ्यास चल रहे हैं। हालांकि ये योग पूरे साल भर होते हैं। विशेष बात यह भी है कि यहाँ बच्चे भी योग करने आते हैं। क्या कहते हैं रामदेव पार्क में योगा करा रहे योग गुरु नंद किशोर सोलंकी?
3: पिछले कई दशक से, यानी कि 10 वर्ष से अधिक समय से हम विभिन्न क्षेत्रों में, स्कूल कॉलेज से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो इस दिव्य अनुष्ठान में अनवरत लगी है। तो बच्चों को जो बचपन से, आज भी जो बच्चों के भीतर जो संस्कार हैं, हम कोशिश करते हैं बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने हेतु प्रेरित करें। अभी बाबा रामदेव पार्क में 2020 से अनवरत यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उससे पूर्व दीनदयाल पार्क में, उससे पूर्व राधामणि सदन नथु सरवास में इसका हमने शुरुआत

0: की थी। उससे पूर्व हमने बीकानेर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। बच्चों के भीतर बचपन से ही संस्कार विद्यमान हो, हम बच्चों में को शारीरिक दक्षता में योग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार का पूर्ण समावेश हो, इस निमित्त बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो नियमित रूप से आने वाले बच्चे हैं उनको समापन दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित करते हैं और हमारी संस्था का प्रमाण पत्र देते हैं। और बच्चों के भीतर निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि उनके भीतर बहुत उत्साह है, योग के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है। आज ऐसे हजारों बच्चे, वो भी बच्चे हैं जो इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने छुट्टियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सोने में, इधर उधर मौज मस्ती में, लेकिन हमारे इस पार्क में पहुंचने वाले वो बच्चे हैं बहुत ही प्रज्ञावान, विवेकवान बच्चे हैं। अपने छुट्टियों का सदुपयोग करने हेतु वो संकल्पित हैं, उनका जीवन योग के प्रति बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। उनका यहाँ पर हम आहार विहार से लेकर के उनके आचरण में किस प्रकार से परिवर्तन हो, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का जो संकल्प है वो किस प्रकार से आगे बढ़े, इस हेतु बच्चों को संकल्पित करने का ये जो दिव्य अनुष्ठान है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी भाई बहन जो भी इसमें अपनी आहुतियाँ अर्पित करें, उनका भी ये अनुष्ठान योग का चल रहा है और निश्चित तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। और बच्चों की संख्या भी, तो अभी हमने 5 दिवस हुए हैं, अभी 5 दिवस के अंतर्गत हमने शुरू किया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ये पार्क छोटा पड़ जाएगा, बच्चों की संख्या इतनी बढ़ने वाली है।
1: अभी तो छुट्टियां हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जब छुट्टियां पूरी हो जाएगी तब आप बच्चों का किस तरह से आप जो है फॉलोअप करेंगे?
0: बच्चों को हम यहाँ पर बच्चों को इस प्रकार से पारंगत करते हैं, इस प्रकार से प्रशिक्षण देते हैं, जैसे बच्चों की स्कूलों का समय जो 7 बजे निर्धारित होता है, तो बच्चे बर मुहूर्त में उठेंगे तो निश्चित तौर पर वो बच्चे स्कूल जाने से पूर्व योगिंग जोगिंग से लेकर के कुछ प्राणायाम का अभ्यास करके ही वो अपने स्कूलों की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इससे बच्चों का विवेक, प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक पोषित होगा। बच्चे योगिंग जोगिंग का एक हमने एक पैकेज तैयार किया है, उस पैकेज के अंतर्गत वो अपने शारीरिक की दक्षता को बढ़ाते हैं, यानी कि अपने पूरे स्ट्रक्चर बॉडी को मेंटेन रखते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि आप अपने स्कूलों की ओर प्रस्थान करें उससे पूर्व कम से कम योगिंग जोगिंग और जो मुख्यतः 2 प्राणायाम उसका अभ्यास करके जाइए। और हम अभ्यास करेंगे, बच्चों का समय निर्धारित करेंगे ताकि बच्चों को लगातार ये प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं हम लगे हैं इस प्रयास में। जिम केवल एक अपने शारीरिक दक्षता को तो मजबूत कर सकता है, सोले डोले जैसे आधुनिक शब्दों का उपयोग करते हैं तो ये बना सकता है, लेकिन योग ये बच्चे के मस्तिष्क को पोषण देता है, हमारी विचारधारा को परिवर्तन करता है। हमारा ध्येय केवल शरीर को मजबूत और कदकाठी को मजबूत करना ही नहीं है, वो तो योग के माध्यम से होगा ही, लेकिन हम चाहते हैं बच्चों के भीतर बचपन से ही संस्कार विद्यमान हो, परंपरा के अनुसार योग की जो परंपरा है बच्चों के भीतर विद्यमान हो, बच्चे संस्कारी हो। आज के प्रचलन में जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारी पीढ़ियों पर पड़ रहा है, ये बहुत घातक है हम सबके लिए। इसलिए हमने ये शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पर ये बहुत परिवर्तनशाली है और आने वाले समय में बच्चे जब योग से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके भीतर गौरव प्रतिष्ठापित करने का हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
2: और अब सुनिए योग की एक झलक।

0: और अब सुनिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कहते हैं योग के बारे में।
1: क्या नाम है आपका?
2: भावना।
1: भावना, तुम तो बहुत छोटी सी हो, अभी से योग कर रही हो?
2: हाँ।
1: आपको कैसा लगता है योग करना?
2: अच्छा लगता है।
1: और आपके साथ कौन आता है यहाँ पे?
2: पापा।
1: पापा के साथ आते हो और योग कर लेते हो?
2: हाँ।
1: आपका नाम?
3: हर्षिता सांखला।
1: हर्षिता, मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर बहुत ही खुशी है, ये किस बात की खुशी है?
3: योगा करने की वजह से, क्योंकि योगा करने से मेरे जो शरीर है वो तो स्वस्थ रहता है, ताजगी रहती है, तरोताजा रहता है।
1: भी आप पढ़ रही हैं?
3: हाँ पढ़ रही हूँ, 12th class।
1: जी, यहाँ आप आते हो, आपके साथ और कौन आते हैं परिवार के?
3: नहीं, मैं एक ही आती हूँ अभी तो।

0: योग करना कठिन है और सोचना कि मैं योग करूंगी ये बड़ा आसान है, आप क्या मानते हो?
1: नहीं, योग करना बिल्कुल कठिन है। अगर हम रोज करने लग जाएंगे ना तो हमारे लिए ना इजी हो जाएगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा।
0: और यहाँ की जो इस पार्क के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, तो क्या उसका भी कोई फायदा होता है?
1: हाँ, इससे हमको मतलब पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन और मिलता है, हमको मतलब अच्छी मतलब शरीर स्वस्थ रहता है, ताजगी रहती है, अच्छी हवा मिलती है।
0: कोई ऐसे योग जिनके नाम आपको याद है?
1: ताड़ासन, भुजगासन।
0: और कुछ आप कहना चाहते हो जो अभी आपको सुन रहे हैं जो लोग, उनको अगर आप कुछ कहना चाहते हो?
1: देखो, अभी स्कूल की छुट्टियां हो गई है तो आप न पार्क आए और मतलब कहीं भी हो सके वहाँ पे योगा करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए, दिन भर नींद में मत पड़े रहे।
0: हेमलता, तो आपको यहाँ कैसा लगता है आते हो जब?
2: सर, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और मेरी पहले सांस की प्रॉब्लम थी जो अब योग के कारण सही हो रही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और प्रकृति का हमें यहाँ पे आसरा मिलता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। पहले मैं नहीं आती थी और मैं बीमार रहती थी और योग में आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सांस की जो दिक्कत है वो बहुत सही हो रही है।
0: सांस में क्या तकलीफ थी?
2: मुझे अस्थमा की दिक्कत थी।
0: तो उसके लिए कौन सा योग किया?
2: मैंने प्राणायाम किया और जो गुरुदेव बताते थे वही करती थी, जो जो बताते थे।
0: अब आप बिल्कुल ठीक हो सांस के मामले में?
2: नहीं, पूरी ठीक नहीं हुई लेकिन मेरे काफ़ी फर्क पड़ा है, अब 2-3 महीने हो गए मुझे करते हुए योग।
0: कौन कौन आते हो घर से यहाँ?
2: अभी तो फिलहाल मैं ही आती हूँ, मेरे माता जी गृहिणी है, वो आना चाहती है लेकिन वो घर के कामों के व्यस्त रहती है, इसकी वजह से आ नहीं पाती।
0: रेडियो के माध्यम से भी आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, आप उनको बच्चों को खास तौर से क्या कहना चाहते हो कि योग करना नहीं करना, क्या आप कहना चाहती हो?
2: योग तो बेहद ज़रूरी है, करना ही चाहिए और ये हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देता है और हमारे स्वास्थ्य को, जो सबसे उपयोगी है, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरत है, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारा स्वास्थ्य, हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारा स्वास्थ्य, तो उसको स्वस्थ करता है और तो हमें योग तो करना ही चाहिए।
0: क्या नाम है आपका?
3: डिंकू सांखला।
0: डिंकू, डिंकू आपको यहाँ कैसा लगता है?
3: मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है।
0: अभी आपकी उम्र क्या है?
3: मेरी उम्र 10 साल है।
0: अच्छा, 10 साल की उम्र में यहाँ इतनी दूर आते हो और बहुत ही अच्छे से योग करती हो, है ना? तो योग करना कैसा लगता है?
3: योग करना अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से योग, कुछ नाम बता सकते हो?
3: हाँ, जैसे कि कौंड्यानासन, बक्कासन, स्प्लिट। और
0: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम खुशी शांखला।
0: खुशी, आप यहाँ योग करने आते हो?
4: हाँ।
0: आपको यहाँ सुबह कितने बजे आते हो आप?
4: 5:30
0: जी। और कितने समय से योग कर रहे हो?
4: 2-3 साल से आराम से।
0: सारे योग कर लेते हो, कुछ योग के नाम आप बता सकते हो?
4: हाँ, जैसे ताड़ासन, चक्रासन, गरुड़ासन, डिम्बासन और भी काफ़ी।
0: अच्छा, यहाँ जब सुबह आते हो, आजकल तो बच्चे बहुत लेट उठने वाले बच्चे ज़्यादा हो गए, तो आप क्या मानते हो कि जल्दी उठते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं?
4: जल्दी उठने से हमारा दिन अच्छा जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए सभी को।
5: श्रोताओं, पिछले सप्ताह स्थानीय दमाणी धर्मशाला में JSV नर्सिंग केयर संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जुगल किशोर पुरोहित थे, वहीं मुख्य वक्ता डॉ. जगदीश दान बारट, विशिष्ट अतिथि गोप सिंह चारण रहे। अधिक जानकारी देते हुए आप हैं समारोह के अध्यक्ष डॉ. नरसिंह बिन्नाणी।
6: 12 मई को स्थानीय दमानी धर्मशाला में एक कार्यक्रम JSV नर्सिंग संस्थान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स थे उनके जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में कवि जुगल किशोर जी पुरोहित उपस्थित थे और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जगदीश जी बारट उपस्थित थे। जो हैं, यह बात उठाई गई कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो काम क्रीमिया युद्ध के दौरान रोगियों की सेवा के लिए किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज जब हम देखते हैं कि विश्व में कई देशों में युद्ध चल रहा है तो उस दृष्टि से नाइटिंगेल की जो सेवाएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं नर्सिंग के रूप में। और नर्सिंग जो सेवा हैं वो आज के समय में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला एक स्टाफ होता है। रुग्ण, निःशुल्क, दिव्यांग आदि व्यक्तियों की देखभाल करने में नर्सिंग स्टाफ का अद्वितीय योगदान होता है। प्रत्येक हॉस्पिटल व हॉस्पिटल के

0: आभार। जरूरत के समय सभी नर्सिंग स्टाफ संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ सेवादार के रूप में रोगण, निशक्त व दिव्यांग सहित अन्य सभी रोगियों के लिए तन मन से सेवारत रहते हैं। इस दृष्टि से इनकी सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ में मानवीयता की भावना आवश्यक है। नर्सिंग स्टाफ इंसानियत का प्रतीक हैं। इसी कारण नर्सिंग स्टाफ की समाज में सम्मानजनक पहचान भी बनी हुई है। आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा क्रीमिया युद्ध की बिजली, पानी, स्वच्छता, रसद सामग्री, अस्पताल, संचार सुविधाओं आदि के अभाव की विषम परिस्थितियों में 18,000 रोगियों की पूर्ण मनोयोग व उत्साह से सेवा की गई थी। सुश्री नाइटिंगेल द्वारा इस प्रकार रोगियों की सेवा शुश्रूषा करना सभी नर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज के संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक हैं। सभी नर्सिंग कर्मी रोगी सेवा ही प्राथमिक धर्म की भावना से कार्य कर रहे हैं। क्रीमिया युद्ध के दौरान जो कार्य नर्स नाइटिंगेल द्वारा किया गया था वह कार्य सभी नर्सिंग कर्मियों के लिए गौरव की बात है। यही आज के समय में रोगियों की सेवा के साथ ही देश की सच्ची सेवा भी माना जा सकता है। आज के समय में नर्सिंग दिवस मनाने की सार्थकता इस दृष्टि से है कि आज हम देखते हैं कि इंसानियत, सेवा, त्याग की भावना दिनों दिन कम होती जा रही है। तो इस दृष्टि से देखें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा की गई सेवाएं आज के समय में सभी नर्सिंग कर्मियों के लिए प्रेरणास्पद हैं और समाज व राष्ट्र के लिए वे बहुत आवश्यक हैं।
1: श्रोताओं, गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए कोई घर बना रहा है। जी हाँ, बीकानेर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विशेष डिजाइन के मिट्टी के घोंसले बनाते हैं पक्षियों के लिए घर। आप हैं रामदयाल राजपुरोहित। आइए जानते हैं इन्हें इस काम के लिए कैसे प्रेरणा मिली और कैसे ये काम आरंभ किया।
2: चिड़ियों का घोंसला आज से 15-20 साल पहले मैं शिवबाड़ी मंदिर गया था। वहाँ पे राजमाता जी प्रतिदिन या एक दो दिन ठहर ठहर के वहाँ पे आते थे। तो वहाँ हम लोग कोई शूटिंग कर रहे थे, कोई एक फिल्म थी उसकी हम शूटिंग कर रहे थे। वहाँ पे उनसे मेरा परिचय हुआ। परिचय तो उन्होंने कहा ये किसके लिए कर रहे हो शूटिंग। मैंने कहा साहब लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए। बोला आप अपने लिए कर रहे हो। मैंने कहा अपने लिए तो ऐसा काम कर दो ताकि कोई दूसरों के लिए भी कुछ करो। तो उस वक्त मैं उसको समझ नहीं पाया था क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा जीवन में ऐसा काम करो कि लोग दूसरे भी याद रखे आपको और दूसरों के लिए जियो, तब मज़ा आए। फिर उनसे मैंने विस्तार से पूछा, विस्तार से बातचीत की। तो उन्होंने कहा ऐसे बहुत काम है। तो दो तीन उन्होंने उदाहरण दिए जीव जंतुओं के, गायों के, और तब से मेरे ये दिमाग में आ गई थी साहब
3: जी। ये दिमाग में आने के बाद आपने इस काम को कैसे शुरू किया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं धन की भी आवश्यकता है, तो आपने उसकी व्यवस्था कहाँ से की?
2: हाँ, धन की आवश्यकता है इसमें और बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मेडिकल स्टोर वाले जितने भी लोग हैं हमारे, ये परिचित हैं, क्योंकि मेरा जहाँ घर है उसके बाजू में हॉस्पिटल है, तो वहाँ मेडिकल स्टोर की 3-4 दुकान, वो परिचित, उनसे हम लोग गत्ते लेते थे। गत्ते लेके वो उनके ऊपर हमारे को रेपर देते थे उस पर चिपकाने के लिए। तो हम उसमें गत्ते लेके चिपकाते थे, वो लोग हम लोग वितरण करते थे। तो ये वहाँ से ये शुरू हुआ था हमारे। उसके बाद में देखा कि गत्ते आने मुश्किल हो गए और डिस्पेंसरियों में ये चीज़ मिल नहीं रही थी, दुकानों में भी ये चीज़ हमारे को नहीं मिल रही थी। फिर हमने एक उपाय किया, अब किसको किस तरीके से सॉल्व करें। और फिर क्या, गत्ते भी कुछ टाइम के बाद में बारिश में पानी में भीग जाते थे, ख़राब हो जाते थे। तो मैंने कहा कुछ ऐसा काम हो जो कुछ लॉन्ग टाइम चले और कुछ हमारा धन भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, क्योंकि हमारे पास पैसा तो था ही नहीं, तो उसको सहयोग कैसे किया जाए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि बैंकों से संपर्क किया। बैंकों के पास में नोटों की गड्डियाँ आती थी, वो लकड़ी के पेटी में आती थी। तो हमने उनसे संपर्क किया कि भाई आप ऐसे ऐसे करके हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप हमारे को ये दीजिए। तो उन्होंने हमारे को बहुत सहयोग दिया, योगी जी करके हैं यहाँ पे, SBB बैंक के, उन्होंने सारी बैंकों से हमारे को कॉन्टैक्ट करवाया और सारी बैंकों को जब भी आपके पास नए नोटों की गड्डी आती है इस बंदे को आप पेटियाँ दे दिया करो, ये बंदा ये काम। हमने वो पेटियाँ ली, पेटियाँ लेकर फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसी जगह पर हम लोगों ने मिस्त्री बिठाई, मिस्त्री बिठा कर वो बनाना शुरू किया। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे धीरे धीरे स्कीम चली। छोटे बच्चों को भी हमने तैयार किया, स्कूलों में गए, छोटे बच्चों को तैयार किया हमने कि भाई आप ये घोंसला लगाओ, आपको पेंसिल दी जाएगी, आपको ये कुछ बुक दी जाएगी। ऐसे कर करके हमने इस मुहिम को इतना ज़बरदस्त आगे किया है कि जिसकी आज की कंडीशन में डेली के 10-12 लोग आते हैं घोंसले लेने के लिए।

0: श्रोताओं, आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, जो कि अब आने ही वाला है, लेकिन इसकी तैयारियां बीकानेर में अभी से आरंभ हो गई है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 मई से 20 जून तक चलाए जा रहे 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान का आरंभ हो चुका है। इसी क्रम में बीकानेर के अलग अलग स्थानों पर आयुष मंत्रालय द्वारा योग का अभ्यास करवाया जा रहा है। इसी क्रम में बीकानेर के पार्क में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास योग एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष शेषमा करवा रही है।
1: आयुर्वेद विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारियों के लिए योगाभ्यास शुरू किया गया है।
0: और आइए अब सुनते हैं योग की एक झलक।
2: पैर को प्रारंभिक अवस्था में लेकर आए, दूसरी ओर से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर का तलवा दाएं पैर की अंदरूनी जंगा से सटाएं, श्वास भरते हुए हाथों पर उठाएं, नमस्कार मुद्रा, धीरे धीरे वापिस आएं, पैर को प्रारंभिक अवस्था में लेकर आएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें, कोशिश करें हथेलियां जमीन से स्पर्श करें, नासिका को घुटनों से स्पर्श करने की कोशिश करें, इसी स्थिति में बनाए रखें। ये आसन उदर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है तथा पाचन अंगों की शक्ति को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए, लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ें। अब हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। उच्च रक्तचाप तथा चक्कर आना, हर्निया की स्थिति में इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी, हाथों से कमर को सहारा देते हुए श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें।
0: तो ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

ये था बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर थे श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजक थे श्री अमित सिंह।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत भूंगर खां और साथियों की आवाज में।

चंपा मेथी और साथियों के आवाज में अभी आपने सुनाई राजस्थानी लोक गीत। आइए सुनते हैं समंदर खां और साथियों की आवाज में ये गीत।

0: समंदर खां और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधी

0: गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: And also infrastructure development that has happened.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभाव

भी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म पालकी में मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होगा कार्यक्रम चित्र भारती।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में,
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है, कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या

दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार। पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी

0: कि जिक्र के सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज़।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं।

0: ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है। हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
2: ओ न रोना के तू

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर मां के सशक्त किरदार भी बीच-बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। यह किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के तहखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे परवाना आजादी से उनकी मौत चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में मां का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास मां है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस मां को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में मां बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में मां पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।
1: तुम कितने

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में मां का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की मां ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो मां को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में मां का किरदार।
3: मेरे पास मां है,
0: ये था लघु रूपक मेरे पास मां है। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक

0: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं
1: बहुत अच्छी बात है
0: और मैं चला जा रहा हूं चला रहा हूं और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है कितनी बड़ी ट्यून कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन कि हर पल गिन गिन गिन किसी की हाय यादों में किसी की हाय बातों में किसी से मुलाकातों में कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन गुजर जाए दिन दिन इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं

पहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष

0: पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded

0: an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris, of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरो अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम He is accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. Pandit Kaivalya Kumar Gurav begins his vocal recital with Rag Durga, Rupak Tal, Rasa Kanhare, Drut Ek Tal, Lagi Lagana Tore Piyase, Drut Teen Tal, Chatura Sugara.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: दैट वॉज राग अभोगी। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक इन विच यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच

0: एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industry.